إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته

ईंदड़ ॿिनि महिननि लाइ व्याज जी शरह 11.5% बरक़रार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसीअ जो ऐलान करे छॾियो। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद चयो आहे त जुलाई खां फेबरवरीअ ताईं महांगाई 5.5% हुई। माली साल 2026 में करंट अकाउंट खसारो 13.9 करोड़ रहियो। माली साल 2027 में करंट अकाउंट खसारो GDP जे हिसाब सां 0.5% रहंदो। सभिनी अदायगियुनि बावजूद नाणे जी मटासटा जा ज़खीरा वधाया आहिनि। भारत खिते में दहशतगर्दीअ जो सभ खां वॾो सरपरस्त आहे ऐं अदम इस्तेकाम जो ज़िमेवार आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ भारतीय वज़ीर राजनाथ सिंह जे बयान खे रद्द कंदे चयो आहे त भारत जे जारहाणनि क़दमनि सबबि ख़तरो खितो यर्गमाल आहे। भारतीय वज़ीर जे बयानबाज़ी बिगड़ती जोॻी आहे जेका ख़तरनि खे वधीक वधाए रही आहे।

0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ॻाल्हियुनि खे मौक़ो ॾियण लाइ ईरान ख़िलाफ़ हमला रोकिया। सफ़ारतकारी नाकाम थियण जी सूरत में फ़ौजी कार्रवाइयुनि ॿीहर शुरू थी वेंदी। ॻाल्हियूं नाकाम थियूं त ईरान ख़िलाफ़ कार्रवाई वधी सघे थी। ज़रूरत पई त वधीक वॾा हमला करण जो हुकुम ॾिनो वेंदो। डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यू ॾींदे चयो त अमेरिका ईरान सां संजीदा ॻाल्हियूं करे रहियो आहे। घणो वक़्तु ज़ाया नथो करे सघिजे। ॻाल्हियुनि ऐं सफ़ारतकारीअ खे जल्द उकलायो वञे। नून लीग पंहिंजनि बदमाशनि ऐं गुंडनि खे लगाम ॾे। गुलू बटन पीपल्स पार्टीअ जे हिक ॿिए वर्कर खे शहीद करे फासिस्ट बरकरार रखी। नून लीग उमेदवारनि पारां हथियारनि जे आज़ादाणे इस्तेमाल ते इलेक्शन कमीशन जी ख़ामोशी समुझ खां ॿाहिरि आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त फारम 47 जे उमेदवार ऐं हैराती मैंडेट वारा कश्मीर में माहौल ख़राब करे रहिया आहिनि। नून लीग क़यादत कन खोले ॿुधी छॾे कश्मीर जो पुरअमन माहौल ख़राब थियण न ॾिनो वेंदो। कराची जे इलाइक़े औरंगी टाउन में पुलिस मुक़ाबिलो 2 फोरू मारिजी विया। फायरिंग जी ॾेवठि में हिकु पुलिस अहलकार बि शहीद। पुलिस मूजिबि औरंगी टाउन 11:30 नंबर वेझो नेशनल चौक वटि गश्त ते मुक़ररु शाहीन फोर्स जे अहलकारनि जो ॾोहारियुनि सां मुक़ाबिलो थी पियो। फायरिंग जी ॾेवठि में 2 ॾोहारी मारिजी विया। गोलियूं लॻण सबबि शाहीन फोर्स जो अहलकार हसन अली अब्बास बि शहीद थी वियो। IG सिंध जावेद आलम ओढो DIG वेस्ट खां वाक़े जी रिपोर्ट तलब करे वरिती। IG सिंध चयो आहे त शहीद पुलिस अहलकार हसन अब्बासी ॾोहारियल अंसरनि ख़िलाफ़ बिना ख़ौफ़ मुक़ाबिलो करे दिलेरी ऐं पेशावराणे ज़िमेवारी जो आला मिसाल क़ाइमु कयो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पंहिंजो शहर पंहिंजो घर सकरण ऐं सकरण जो आवाज
3: GAFM 90.8
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري

0: तेरे बाद हम तुम्हारे नहीं रहे,
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

मसलन जे हल लाइ शफ़ाफ़ ऐं गैर तकरारी चूंडूं ज़रूरी आहिनि। आज़ाद कश्मीर में मुहाजरनि जे सीटनि वारो मामिलो जहिड़ी तरह हल थियणु घुर्जे हा, ईअं हल न थियो। चूंडूं तकरारी थियूं त ईंदड़ हुकूमत जो मैंडेट बि तकरारी हूंदो। तकरारी मैंडेट सां ईंदड़ हुकूमत मसला हल न करे सघंदी। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे मुज़फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त कश्मीर में इस्तेकाम लाइ पहिरियों मरहलो शफ़ाफ़ इलेक्शन आहे। आज़ाद कश्मीर जूं चूंडूं हाणे खां ई कुझु तकरारी थी चुकियूं आहिनि। चाहियां थो त कश्मीर जे माण्हुनि खे बि पाकिस्तानी शहरनि जे बराबरी हक़ मिलनि। पीपी जे मंशूर ते अमल सां ई बहरान ख़त्म थी सघनि था।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां पाकिस्तान में मुकरर चीन जे सफ़ीर जियांग ज़ाई डोंग जी मुलाकात, विच ओभर अफ़गानिस्तान ऐं ॾखण एशिया समेत खिते जे मजमूई सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। वज़ीर-ए-आज़म पारां चीनी सदर शी जिनपिंग ऐं वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग लाइ नेक ख़्वाहिशन जो इज़हार। शहबाज शरीफ चयो आहे त ॿई मुल्क ते थियल फ़ैसलनि ऐं मुआहिदनि ते अमल लाइ वेझो सहकार जारी रखंदा।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं अमेरिकी कांग्रेस जे वफ़द पारां दिफ़ाई ऐं वापार सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। रायन केथ ज़िंके ऐं माइकल जेम्स पारां जे एच क्यू रावलपिंडी में फील्ड मार्शल सां मुलाक़ात। खिते जी सूरत हाल, दिफ़ाई सहकार वधाइण, ॿिन तरफ़नि वापारी ऐं इक़्तिसादी राब्तनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। सैयद आसिम मुनीर चयो आहे त पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक़ीअ जा तमामु घणा मौक़ा मौजूदु आहिनि। पायदार इलाक़ाई इस्तेहकाम, मुआशी तरक़ी, वापार खे हथी ॾियण ऐं राब्तनि सां वागियल आहे। ISPR मौजूदु मुलाक़ात फील्ड मार्शल ऐं अमेरिकी वफ़द विच में मुलाक़ात दौरान पाकिस्तान ऐं अमेरिका जा लाॻापा वधीक मज़बूत बणाइण ऐं मुख़्तलिफ़ शोभनि में सहकार वधाइण जो अज़म वरिजायो वियो।

ईंदड़ ॿिनि महिननि लाइ व्याज जी शरह 11.5% बरक़रार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसीअ जो ऐलान करे छॾियो। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद चयो आहे त जुलाई खां फेबरवरीअ ताईं महांगाई 5.5% हुई। माली साल 2026 में करंट अकाउंट खसारो 13.9 करोड़ डॉलर रहियो। माली साल 2027 में करंट अकाउंट खसारो GDP जे हिसाब सां 0.5% रहंदो। सभिनी अदायगियुनि बावजूद नाणे जी मटासटा जा ज़खीरा वधाया आहिनि। भारत खिते में दहशतगर्दीअ जो सभ खां वॾो सरपरस्त आहे ऐं अदम इस्तेकाम जो ज़िमेवार आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ भारतीय वज़ीर राजनाथ सिंह जे बयान खे रद्द कंदे चयो आहे त भारत जे जारहाणनि क़दमनि सबबि ख़तरो खितो यर्गमाल आहे। भारतीय वज़ीर जे बयानबाज़ी बिगड़ती जोॻी आहे जेका ख़तरनि खे वधीक वधाए रही आहे।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ॻाल्हियुनि खे मौक़ो ॾियण लाइ ईरान ख़िलाफ़ हमला रोकिया आहे। सफ़ारतकारी नाकाम थियण जी सूरत में फ़ौजी कार्रवाइयुनि ॿीहर शुरू थी वेंदी। ॻाल्हियूं नाकाम थियूं त ईरान ख़िलाफ़ कार्रवाई वधी सघे थी। ज़रूरत पई त वधीक वॾा हमला इंटरव्यू ॾींदे चयो त अमेरिका ईरान सां संजीदा ॻाल्हियूं करे रहियो आहे। घणो वक़्तु ज़ाया नथो करे सघिजे। ॻाल्हियुनि ऐं सफ़ारतकारीअ खे जल्द उकलायो वञे। नून लीग पंहिंजनि बदमाशनि ऐं गुंडनि खे लगाम ॾे। गुलू बटन पीपल्स पार्टीअ जे हिक ॿिए वर्कर खे शहीद करे फासिस्ट बरक़रार रखी। नून लीग उमीदवारनि पारां हथियारनि जे आज़ादाणे इस्तेमाल ते इलेक्शन कमीशन जी ख़ामोशी समझ खां ॿाहिरि आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जी लिना मेमण चयो आहे त फारम 47 जे उमेदवार ऐं हैराती मैंडेट वारा कश्मीर में माहौल ख़राब करे रहिया आहिनि। नून लीग क़यादत कन खोले ॿुधी छॾे कश्मीर जो पुरअमन माहौल ख़राब थियण न ॾिनो वेंदो। कराची जे इलाइक़े औरंगी टाउन में पुलिस मुक़ाबलो 2 फोरू मारिजी विया। फायरिंग जी ॾे वठि में हिकु पुलिस अहलकार बि शहीद। पुलिस मूजिबि औरंगी टाउन 11:30 नंबर वेझो नेशनल चौक वटि गश्त ते मुक़ररु शाहीन फोर्स जे अहलकारनि जो ॾोहारियुनि सां मुक़ाबलो थी पियो। फायरिंग जी ॾे वठि में 2 ॾोहारी मारिजी विया। गोलियूं लॻण सबबि शाहीन फोर्स जो अहलकार हसन अली अब्बास बि शहीद थी वियो। IG सिंध जावेद आलम ओढो DIG वेस्ट खां वाके जी रिपोर्ट तलब करे वरिती। IG सिंध चयो आहे त शहीद पुलिस अहलकार हसन अब्बासी ॾोहारियुनि अंसरनि ख़िलाफ़ बिना ख़ौफ़ मुक़ाबलो करे दिलेरी ऐं पेशावराणे ज़िमेवारी जो आला मिसाल क़ाइमु कयो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: बहजो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
0: GFM 90.8।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, viram fauri khatam. Aaj hi kareebi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: हिन वक़्त ताईं आयल नतीजनि में नवाज़ लीग मैदान मारे वरितो ॾह तकनि मां नून लीग सतनि ऐं पी पी टिनि सीटनि ते कामयाबी हासिल करे वरिती रहियल तकनि ते वोटनि जी ॻणप जारी

0: सुल्तान सईदाबाद में बम आया। सुल्तानपुर शाखन के पुछले के आबादगारन जो बेडी बे पानी खोट खिलाफ मुजाहिरो आबादगारन मुजाहिरो करे सिख्या मोरी ते धरणो हयो। आबादगारन मुझ बंबा ऐं सुल्तानपुर शाखन जे पुछड़ीअ में ज़रे पाणी जी सख़्त खोट आहे, जंहिं सबबि फसलुनि जी पोखी मुतासिर थी रही आहे। पाणी फराम कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ?
3: न अदा, आसाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻ

लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, कुछ हटके कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, तो लगे रहे बहुत सही जा रहे हैं आप. इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियों और चौबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे पुरस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिकुम, अहलन व सहलन, मरहबा व खैर आगले जी आयनु, सब बिस्मिल्लाह, बोंजोर शाओ, निहाओ, वेलकम इनटू

की तरह बहुत कुछ होगा सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें हम आपसे करेंगे. लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना जो कि होगा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, और सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

कहोगे जी प्रज्ञान में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके का से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है darris@facebook.com/gfm88 की पेज के ऊपर लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग आपको मिलेगी जो कि होगी लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग नहीं, पोस्ट मिलेगी, पोस्ट होगी जिंदगी गुलजार है कि. उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. तो कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है जी 03000113488. इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं तो जरूर कॉल कीजिए और मेरा साथ दीजिए क्योंकि हम साथ साथ हैं पूरे पूरे 1 बजे तक. स्टे ट्यून्ड.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों
3: की खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक. आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कॉल्स के थ्रू. सो कॉल्स आप लोगों की. नेक्स्ट कॉलर, हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: जी मैं वकार पीछे लड़का ना दे. आप कैसे सुन रहे हैं?
0: वकार भाई
1: कर लगाओ गाना.
0: ओके वकार भाई, प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, गाने का सेगमेंट भी पता है. गाना लेकर आए, कोई गाना याद है?
1: जी जी गाना याद है.
0: तो सुना दे
1: गाना. है दर्द हो दिल में तो
0: दवा. सुना है ना? बिना दर्द
1: दर्द वाला.
0: हाँ बिना दर्द वाला सुनाए, ताकि सुनने वालों को ना पेन किलर न लेनी पड़े.
1: तो ये है खराब.
0: किसका गाना? मंजूर सकीन.
1: मंजूर सकीन.
0: गाने का टाइटल क्या है?
1: गुलाब दिंदी हुई सोच जो नो शराब दिंदी हुई.
0: तुझी
1: इंदे गुलाब दिंदी हुई सोच जो नो शराब दिंदी हुई. साता लता समझे.
0: ओके ठीक है. मुझे पता है किसी को डेडिकेट करना है.
1: ये डेडिकेट आपको और मेरे दोनों.
0: ओके थैंक यू सो मच. और मंजूर सकी रानी का ये गाना हम प्ले कर रहे हैं. और जी इसके अलावा कॉल्स आप लोगों की 03000113488. ओके जी गाना मेरे ख्याल से अगर तो यही वाला है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी हम सुनेंगे इसको.

आगे जी साथ साथ आज का टंग ट्विस्टर भी आपको बताती जाऊंगी। आपने कहना है कि काशान ने कच्ची कलियां खुले खेत में खिलती देखी, ठीक है, ये कहना है कि काशान ने कच्ची कलियां खुले खेत में खिलती देखी। काशान ने कच्ची कलियां खुले खेत में खिलती देखी ये कहेंगे, और जब आप ये कहेंगे तो जो बंदा ज्यादा से ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन करेगा हमारे इस सेगमेंट को।

ओके जी, इसी के साथ एक और गाना प्ले करेंगे, गाने के साथ जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे. और जिन लोगों ने हमें कमेंट्स और मैसेजेस कर दिए, थोड़ा सा हौसला कीजिएगा या इंक्लूड करते हुए जाते हैं. जी खालिद सुल्तान का कमेंट आया, वेलकम टू द शो स्वीट सी आरजे, वेलकम टू यू एज वेल खालिद सुल्तान, थैंक यू. वाओ नाइस सॉन्ग आतिफ असलम का माहिया, वे प्यार परदेसी ने हमें ज्वाइन किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तो ये सारे कमेंट्स अभी तक के, सो स्टे ट्यून्ड, सुनते की गुलजार है.

कारगर्दगी बेहतर बनाने सुधार आने की हिदायत शहबाज शरीफ चो तो नई पॉलिसी से अमल के यकीनी बनाया वे। वफाकी वज़ीरनि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस जो दौरो मौसमियाती तब्दीली असरन बाबत ब्रीफिंग वरती। NDMA चयो आहे त मुल्क जे मथां इलाइक़नि में गैर मामूली बरसातूं पवण जो इम्कान आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त मौसमियाती तब्दीलीअ वधंदड़ आबादी वॾो चैलेंज आहे। आलमी बैंक सां गॾिजी मौसमियाती तब्दीलीअ ते कम करे रहिया आहियूं। वफाकी वज़ीर मोइन भुट्टो चयो आहे त पाणी ज़खीरो करण जी सलाहियतनि में वाद वक़्त जी ज़रूरत आहे। मुसद्दिक मलिक चयो त मौसमियाती तब्दीली सबब मुतासिर थींदड़ मुल्क सूरत हाल जा ज़िमेवार न आहिनि। वफाकी वज़ीर अता तारण चयो त NDMA सूरत हाल बाबति अॻुवाट अलर्ट करण जो निज़ाम जोड़ियो आहे।

0: ज़रिया अमेरिकाजूं पहुंचायल तजवीज़ूं रद्द करे छॾियूं। नायब ईरानी परॾेही वज़ीर काज़िम गरीबाबादी चयो आहे त अमेरिका सां सालसन ज़रिए ॻाल्हियूं इस्लामाबाद में थियूं हुयूं, जेके अमेरिका जे घर
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अनिया साबी दर्द इतरो वधी वियो आ है जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आ है छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थे हंद ते आसानी सा जजब थी सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी।
2: सिर्फ चेल ही सूर लाए
3: ना दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

voicemail जल्द आ रहा है। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88

0: Okay, next caller लेने जा रहे हैं 0300-01-34-88 next. Hello.
1: Hello.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: मैं फारूक का मैं बात कर रहा
0: हूँ. ओके, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मोरो से बात कर रहा हूँ.
0: मोरो से बात कर रहे हैं. मुझे बताएं कि पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: जी जी.
0: ओके, मुझे ये बताइएगा कि या हाँ टंग
1: ट्विस्टर
0: नहीं, गाना तो मैं सुनाऊंगी, मुझे टंग ट्विस्टर सुनाएंगे? टंग ट्विस्टर बोलेंगे, सुनाएं? ओके, तो बोले ओके जी. अल्लाह हाफिज, थैंक यू. गाना सुनाने वाला सेगमेंट नहीं है भाई, कह रही हूँ टंग ट्विस्टर सुनाएं, बोलेंगे. हमको गाना सुनाओ, बस गाना सुनाओ, गाना सुना दो बस. अच्छा, नेक्स्ट कॉलर. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम सरदार, कैसी हो? आपका ही इंतजार था. ये हाय अल्लाह कितना अच्छा करती हो सरदार, एक बार फिर से करना. एक बार फिर से करना 5 रुपए का. अरे वाह, क्या बात है जी, क्या बात है. अच्छा मुझे बताओ, टंग ट्विस्टर सुना है?
2: ऐसे थोड़ी ना कॉल करती हूँ मैं.
0: ऐसे थोड़ी ना कॉल करती है सरदर्द. वाओ, वेरी नाइस. अच्छा मुझे बताओ, टंग ट्विस्टर सुनाओ. वेरी नाइस. ये तो बहुत अच्छा बोला है सरदर्द. और कुछ कहना है? इतने दिनों बाद सुनी है ना.
2: हाँ, वो भी इतनी खूबसूरत गाना.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और कुछ? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक और गाना प्ले करूँ. जो एक और गाना है वो कौन सा होगा, वो मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ. एक और ट्रायल करते हैं जी, जब तक गाना मेरे सामने आए. हेलो,
3: अस्सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? मोहम्मद ताहिर लोन भाई, कैसे? ठीक ठाक. ओके, वेरी नाइस. और मुझे बताइएगा कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, टंग ट्विस्टर सुना, बोलेंगे?
3: जी बिल्कुल सुना है. और बोलेंगे?
0: ओके, बोलिए बोलिए. ओके, स्टॉप स्टॉप. और कुछ कहना है
3: जी? और दोस्तों का नाम देते हैं?
0: दे दे. और नाम भी बताएं अपना प्लीज.
3: मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर लोन.
0: मोहम्मद ताहिर लोन. ओके, वेरी नाइस. दोस्तों को शामिल कर लें. ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू.
4: रात भर चैन से सोके

0: साथ साथ कॉलर्स को एंटरटेन करते हैं. एंड नेक्स्ट कॉलर, हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: आप तो पहले
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आसिफ अली चाचर, मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं? टाइम टू सुना बोलेंगे.
1: ये प्रोग्राम सुन रहा.
0: काशान ने कच्ची कलियां खुले खेत में खिलती देखी.
1: काशान ने कच्चियां
0: नहीं कलियां.
1: काशान ने
0: कच्ची कलियां.
1: काशान ने कच्ची कलियां.
0: आपसे नहीं हो पाएगा, कुछ और बोलेंगे, कुछ और कहेंगे.
1: आपका शोर चल रहा हूँ.
0: चले सुनते रहे. एक गाना भी प्ले कर रही हूँ आपके लिए. आपको डेडिकेट होता है जी. आप तमाम लोग, जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं. सो हियर कम्स अ सॉन्ग. द सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल बाय बिलाल सईद एंड मेहर ताहिर.

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जो वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार आपको और मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का और शो का लास्ट ब्रेक जिसके बाद हम वापस आ चुके हैं. एंड वापस आने के बाद आप लोगों की लास्ट एंड लकी कॉल्स भी हम रिसीव करेंगे आज के बोलो तुम्हारे सेगमेंट के कौन है विनर्स वो भी मैं आपको बताऊंगी. और आज के जो विनर्स है ना वो कुछ इस तरीके से हैं कि सरदर्द ने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला, मोहम्मद ताहिर लुंड ने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला. तो ये है आज के विनर, आज के सेगमेंट के ये दोनों विनर्स. ठीक है, और इसी के साथ लास्ट लकी कॉलर्स को लेते हैं जी और चेक करते हैं कौन है. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? ओके जी, मोरो वालों की आजकल बहुत कॉल्स लग रही है. प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई?
1: प्रोग्राम सुन रहे हैं.
0: कैसा लग रहा है?
1: क्या प्रोग्राम है?
0: अच्छा प्रोग्राम है. अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आज की अच्छी बात क्या है?
1: आज की अच्छी बात बस आपके नाम पे दोस्त है
0: जी.
1: आज की बात मौसम बहुत अच्छा है.
0: मौसम बहुत अच्छा है मोरू का? बारिश वारिश हो रही है?
1: जी जी.
0: अरे वाह क्या बात है, मोरू में बारिश हो रही है वाकई?
1: नहीं बारिश नहीं हो रही, गर्मी नहीं है.
0: गर्मी नहीं है? अच्छा ये चीज है. ओके और कुछ कहना है? टंग ट्विस्टर वो तो सेगमेंट खत्म हो गया. ओहो कॉल ड्रॉप.

मैं सरोती हूँ. हेलो आरजे, बहुत दिनों बाद जॉइनिंग योर शो. अच्छा, और कहते हैं कि बिजी लाइफ, इंजॉय शो एंड थैंक यू. ओके जी, थैंक यू टू यू एज वेल. मुझे नहीं पता, आपने अपना नाम भी नहीं लिखा, तो जब आप मैसेज किया करें, जितने भी लोग मैसेज करते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर मैंशन किया करें मैसेजेस में, ठीक है. और इसी के साथ फाइनली हम लेंगे आपसे इजाज़त. इंशाल्लाह हमारी आपसे चिटचाट होगी, हमारी चिटचाट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे. सुना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइंस आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज.

0: It's 1 p.m. This time.
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

वज़ीर-ए-आज़म जी सदारत हेठ काबीना जी तवानाई बाबत कमेटी जो इजलास कमेटी और रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 जे मसौदे में तरमीम जी मंजूरी ॾेई छॾी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पारां ओगरा जी कारकर्दगी बहितर बणाइण ऐं सुधारण जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त नई पॉलिसी ते अमल खे यकीनी बणायो वञे। वफ़ाक़ी वज़ीरनि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जे हेड ऑफिस जो दौरो, मौसमियाती तब्दीलियुनि असरनि बाबति ब्रीफिंग वरिती। NDMA चयो आहे त मुल्क जे मथां इलाइक़नि में ग़ैर मामूली बरसातनि पवण जो इम्कान आहे। नाणे वारे वज़ीर चयो त मौसमियाती तब्दीलीअ वधंदड़ आबादी वॾो चैलेंज आहे। आलमी बैंक सां गॾिजी मौसमियाती तब्दीलीअ ते कम करे रहिया आहियूं। वफ़ाक़ी वज़ीर मोइन वटो चयो त पाणी ज़खीरो करण जी सलाहियतनि में वाध वक़्त जी ज़रूरत आहे। मुसद्दिक मलिक चयो त मौसमियाती तब्दीली सबबि मुतासिर थींदड़ मुल्क सूरतहाल जा ज़िमेवार न आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारण चयो त NDMA सूरतहाल बाबति अॻुवाट अलर्ट करण जो निज़ाम जोड़ियो आहे।

0: असली हिट शॉप।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सिर्फ दंदड़े तमाम खूबसूरत मासूम ही सोने समात है मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दुआओं के समंदर चादों की बारिश लाजवल खजानों के साथ दुआ है पल से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात जी से जगता तमीज से आसमान तक जिंदगी से मौत सांस से तर्दम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं ZFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मदली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डे इज इन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो आप लोगों की खूबसूरती जनाब आप लोगों को मिलेगी अगर आप इस्तेमाल करेंगे और जो भी प्रोडक्ट आपको बताए जाते हैं तो उनके बारे में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए अच्छे से जान लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी खूबसूरती के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती का कैसे ख्याल रखेंगे या फिर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप क्यों इस्तेमाल करेंगे तो सब कुछ बताएंगे लेकिन कहते ना कितनी जल्दी किया है अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल जी अपना तारुफ करवाते हैं लिसनर्स रीसेंट मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो जल्दी जल्दी से रेडी शेडी हो जाइए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और फन करने के लिए और खूबसूरत होने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप अपने हाल चाल भी बताते जाइए सो डियर लिसनर्स अंत की हालत कैसे ही आपकी हालत उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सुपकूल मूड के साथ सुपकूल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक यानी कि पूरे 2 घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले हैं और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ इतनी शाली बातें करने वाले हैं। ओके जी यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी ऐसी बहुत सारी अंटियां अमियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सो भी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की संभालने का काम करेगी भाई जान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की संभाल लाते हैं यहाँ पर ऐसा करते ही आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं आगे से प्रोग्राम करते हैं और आगे से प्रोग्राम आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा कसीदा कसीदा सुनते हैं उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंडी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। साथ ही साथ बताते हैं जी कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक क्या लेकर आए हैं, यानी कि आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो मेरे बहुत से लोग हैं, मेरे बहुत से लिसनर्स हैं जो कि बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे होने से मुराद ये कि उनको जो भी चीज ऐसी होती ना, जो भी कह देती हूँ तो वो मान जाती जी। चलिए बातें तो खैर आपसे हम नवा ही लेंगे, लेकिन साथ साथ अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो लाजमी कीजिएगा। और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ आपको डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपने जरा सोच लेना है और समझ लेना है कि ये जो प्रोडक्ट आपको बताए जा रहे हैं ये आपकी स्किन के मुताबिक ही है और आपकी स्किन के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद है। चले जी बातें तो करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल जो पूछूंगी वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप मुझे बताएंगे कि अगर आप, यानी कि मेरे जो लिसनर्स हैं उनमें कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो भाई काम करते होंगे ऑफिस में या फिर बड़े होंगे, तो आप मुझे ये बताएंगे कि अगर स्कूल या फिर ऑफिस में सिर्फ दो दिन काम करना होता, यानी कि सिर्फ आपने दो दिन जाना होता और पांच दिन की छुट्टी होती, तो आप बताएं जिंदगी कैसी गुजरती। क्या ये चीज अगर ऐसी हो जाए, सिर्फ आपने दो दिन जो है या तो ऑफिस में काम कर सकते हैं या फिर दो दिन आप स्कूल या फिर कॉलेज जा सकते हैं, बाकी पांच दिन आपको छुट्टी होगी, तो बताएं आपकी जिंदगी कैसी होती। अभी अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं पहली मर्तबा रोजाना या फिर आप घूमने वाले लिसनर्स हैं, यानी कि चोरी चोरी चुके चुके आप हमें सुनते हैं, तो आप ऐसा करेंगे अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं और फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा फेसबुक पेज है जनाब। आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। आप आइए जल्दी से हमारे पेज के ऊपर, वहाँ पर आप हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, कहाँ कहाँ से ज्वाइन करते जा रहे हैं और उसके अलावा कहाँ कहाँ पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं। ये आप लोगों के ऊपर बात आती है कि आप जरा सा कोऑपरेट किया करें, बताया करें। और जनाब इस्तेमाल करने के लिए आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल भी करा सकते हैं। और वो कैसे, वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनाब टॉपिक को जरा दोबारा से रिपीट करते हैं जो लोगों ने नहीं सुना। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि बताएं जरा, अगर आपका स्कूल कॉलेज या फिर ऑफिस सिर्फ आपने दो दिन के लिए जाना होता वहाँ और पांच दिन की आपको छुट्टी होती, तो बताएं आपकी जिंदगी कैसी गुजरती। मुझे तो ये लग रहा है कि मौजें ही मौजें होती। बाकी आप अपना बताएं, आपको क्या लगता है अगर ऐसा होता तो फिर कैसा होता। ओके जनाब सासत यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और आदिल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की, ए बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे, अच्छा है दिल के साथ रहें पासबाने इल्म पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे, वाइज़े सबूत लाए जो मेके जवाज में, इकबाल को ये जिद है कि पीना भी छोड़ दे। ओके और कहते हैं गाना सुनाइएगा, मैं कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना लगा देंगे। मोहम्मद वसीम अहमदानी हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, कैसी हो पहचाना मुझे। हाँ जी हाँ जी, हिदायतुल्लाह अहमदानी आपको वेलकम कहा जाता है। वैसे आपका ये लास्ट नेम जो है ना, ये खुद ही आपको पहचान क्या क्या आप कौन है। और सुफियान अहमद हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, आप कैसी हैं, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे। और हमारे साथी अली मुर्तजा कहते हैं, तालीम की कमी को तरबियत अच्छी तरह ढांप लेती है, मगर तरबियत की शफाफ को तालीम कभी पूरा नहीं कर सकती। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इधर सलाम एंड गुड आफ्टरनून, प्लीज प्ले बोल कफारा क्या होगा, इतना सेडी गाना बोल दिया आते साथ ही, बोल तुम्हारा क्या होगा। अनवर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सदरा भेण, अच्छा अच्छा भामा तव्हां जी जेका प्योर सिंधियाना उहा थोरी घटि सम्झंदी आहे, सो तव्हां शायरी लिखी आहे वस वस सारंग आंसू पूरियो कर धरती है जी प्यास बुझाए हर तरफ शादाबी कर वाह वाह वाह वाह वेरी नाइस अखलाक बलोच भाई हमारे साथ नाजुक दे दी हाय सदर नाइस यो थैंक यू अनवर भाई कहते बहुत खूबसूरत कसीदा आपने सुनाया आपके क्या कहने थैंक यू भाईजान आपकी समातों का बहुत शुक्रिया एहसन कहती है अस्सलाम वालेकुम मौला इस्लाम मदद ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान लालकना की पहचान मैं भी आ गया कैसी है आप और आपकी तबीयत कैसी है मैं भी ठीक हूँ मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी है आप बताएं आप कैसे हैं आबिद परियास्ती हमारे साथ हैं भाई हेलो अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं और आपको भी वेलकम कहा जाता है उदास लड़की कहती है अस्सलाम वालेकुम स्वीटी वेलकम टू शो टॉपिक फ्री लाइफ गुजरती वैसे तो तुम तो वैसे ही फ्री हो तो अगर तुम भी ऑफिस जाते कुछ काम काज करती तब तुमसे पूछा जाता कि बच्चों बताओ जरा ऐसी लाइफ अगर आपकी गुजरती है तो फिर आपको लग पते जाते हैं बाकी जगह घर में तो उन्हें जिला भी अजारा हूँ भी चंदा बाबा असा भी खुश ना आयो बाकी आहे केर खुश है जो पतो लगाईंदा सी और चाचा खाली चुनी जो आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ जी आप बताएं आप कैसे और हिदायतुल्लाह कहती काश ये होता तो मैं सिर्फ आपका शो सुनता और कोई काम नहीं करता सिद्रा ऐसा होता तो क्या ही बात होती ये टॉपिक आंसर अच्छा महा
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक
2: क्या आप आसाबी दर्द
3: ऑइंटमेंट के साथ
2: जी हाँ
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है
3: आसाबी दर्द जोड़ों का दर्द
2: गर्दन और कमर की तकलीफ
3: पट्टों के खिंचाव मोच
2: चोट पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद
2: आसरा जगह पर दिन में दो से तीन मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
2: तेज आराम मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन White Age Beauty Cream

0: मेरा हीटर, तू तो मेरा
1: White Age Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White Age Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ White Age Beauty Cream ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मोहम्मद उमर बुग्यो ट्रस्ट।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2-3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। सुबह

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

जो इस्तेमाल कर सके तो वाह साई वाह वाह साई वाह। वाइटिश लवली क्रीम जेका अल्ट्रा वाइटमिन जो फार्मूलो आहे जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन्स जा कैप्सूल एड थियल आहिनि, जंहिंमें तव्हांखे वाइटमिन B3 मिले थो, वाइटमिन ई मिले थो, वाइटमिन सी मिले थो, वाइटमिन डी मिले थो, अहिड़ा खोड़ सारा वाइटमिन्स जेके जेके तव्हांजी स्किन खे नीड हूंदी आहे उहे सभु वाइटमिन्स जी कमी खे पूरा कंदा। उन खां अलावा जेको आहे न वाइटिश लवली क्रीम जे अंदरि तव्हांखे सनस्क्रीन बि मिली रही आहे। सनक्रीम खे अलॻि सां इस्तेमालु करणु वठणु सनब्लॉक ॻोल्हणु पंहिंजी स्किन जे मुताबिक़ सां ॾाढो मुश्किल कमु हूंदो आहे। मूंखां पुछो, मूंखां इहे कशाला मां कटिया आहिनि। अगरि तव्हां चाहियो था त बाबा इहे मुश्किल में तव्हां न अचो ऐं तव्हांजे लाइ हिकिड़ो प्रॉपर सही तरीक़े वारो जेको आहे उहो सनब्लॉक हुजे त तव्हां वाइटिश लवली क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था। तव्हांखे जेको आहे सो ग्लो बि मिलंदो, ख़ूबसूरती बि मिलंदी ऐं तव्हांजी स्किन जेका आहे उहा प्रोटेक्ट बि रहंदी। ही जेके उस जा किरणा हूंदा आहिनि तव्हांजी स्किन खे नुक़सान पहुचाईंदा आहिनि, उन्हनि खां तव्हांजी स्किन बि बची वेंदी ऐं तव्हां ग्लो कंदा रहंदा, तव्हांखे सफ़ा VIP रिज़ल्ट बि मिलंदो रहंदो। सो वाइटिश जी लवली क्रीम हिकिड़ी फेयरनेस क्रीम आहे जेका तव्हां हर उमिरि वारो माण्हू लॻाए सघे थो, हर स्किन जे मथां तव्हां लॻाए सघो था ऐं मेकअप जे तौर ते बि तव्हां लॻाए सघो था। तव्हां काॾे वञो था, पढ़ो था, पढ़ायो था, काॾे जॉब कयो था, किथे पार्टी फंक्शन में वञो था, का शादी आहे त तव्हां वाइटिश लवली क्रीम खे लॻाए हीअं चुटकिन में रेडी थी सघो था। उन खां अलावा अगरि तव्हां एक्नी जी वजह सां परेशान आहियो त तव्हां वाइट एज जो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लॻाए सघो था। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको हिकिड़ो मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, हिन जे अंदरि जड़ी बूटियूं एड थियल आहिनि ऐं ही आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे। सो ही न सिर्फ़ तव्हांजे एक्नी जो ख़ात्मो करण जे लाइ तयारु कयो वियो आहे बल्कि हिन खे तव्हां चेहरे ते लॻाईंदा त तव्हांजे चेहरे जा निशान हुजनि, एक्नी हुजनि या फिर तव्हांजे चेहरे ते कट जो निशान आहे, को सड़न जो निशान आहे, बचपन में कोई चोट लॻी उहो निशान तव्हांजे चेहरे ते मौजूदु आहे, तव्हां हुन खे ख़तमु करणु चाहियो था त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लाज़मी लॻाए ॾिसिजो। सफ़ा VIP अथव, पाण इस्तेमालु थियल आहे मुंहिंजो बाबा। मां तव्हांखे इहो चवां थी त अगरि तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लॻाईंदा तव्हांखे ॾाढो भलो रिज़ल्ट मिलंदो ऐं तव्हांजे चेहरे जा जेके बि निशान आहिनि सभु चीज़ूं क्लियर थी वेंदियूं, तव्हांजी स्किन सवा बेदा गोरी गोरी थी वेंदी ऐं जिते जिते तव्हांजो एक्नी आहे, निशान आहे, कोई कट जो निशान आहे, उन्हनि उन चीज़ुनि ते सिर्फ़ु तव्हां लॻाईंदा। डॉक्टर पिंपल जो जेको ट्यूब आहे न तव्हां पंहिंजे पूरे फेस ते न लॻाइजो, ठीकु आहे। लॻाइण खां पहिरियां तव्हां पंहिंजो फेस वॉश कजो ऐं पंहिंजा हथ चङे तरीक़े सां वॉश कजो। जॾहिं तव्हां क्लीन क्लीन रहंदा, तव्हां पाण खे साफ़ सुथरो रखंदा त पोइ तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे ॾाढी सुठे तरीक़े सां मिलंदी। सो ख़ूबसूरती हासिलु करणु चाहियो था त बाबा पंहिंजो चङे तरीक़े सां ख़्यालु रखो ऐं उन खां अलावा जल्दी जल्दी पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराईंदा रहो जीअं तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे मिले ऐं तव्हांखे ख़बर हुजे तव्हां कहिड़े जनरल स्टोर ते वञी पंहिंजे लाइ वाइटिश जा प्रोडक्ट्स परचेज करे सघो था। बिल्कुल जी तव्हां सां गॾु मौजूदु आहियो, किथां किथां ॿुधो पिया मूंखे ॿुधाईंदा ऐं हा टॉपिक जेको पुछो आहे हुनजो जवाब ॾींदा हलंदा ऐं तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि बिल्कुलु पढ़ूं था। पर गानो हलायो आहे त गानो बि ॿुधूं।

हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. हैप्पी ट्यूसडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान जी. आप कैसी हैं? ओए प्यारी. जी जी शायद ऐसा ही है. और कहती है टॉपिक के ऊपर बात करती है कि कोई प्राइवेट जॉब करूंगी उन दिनों में. अच्छा सियाणी अथव. ॾिसो ॾिसो यानी न मां साबित थियो त तव्हांखे वांदो वेहण न आहे ईंदो. सही सही फज़ीला सिंधी मर्शद मौजूदु. वेलकम.

पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, बताइए कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं और साथ साथ वाइटेज का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। चाचा खालिद कहते हैं कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, इन वाइट एज लवली क्रीम शो में। सही है जी। इकबाल आशारी हमें सुन रहे हैं मीरपुर खास से, भाई को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। हबीबुल्ला थेबू हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम जी। निदली कहती है कि आई मैं तो चाहती हूँ कि कोई जॉब करूँ बट ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ जी, वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है। अनमोल भाई कहते हैं चापिक अगर तनख्वाह पूरी 5 दिन वाली मिले तो ये स्कीम दुनिया की बेहतरीन स्कीम साबित होगी, लेकिन अगर तनख्वाह भी 2 दिन के हिसाब से कर दी जाए तो फिर इंसान कहेगा भागो भाई 5 दिन का काम ही भला। नहीं नहीं, तनख्वाह को पूरी मिलेगी, सुकून रखे। ओगी जी किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट हाजिर है आपके लबों पर स्माइल लाने के लिए, भाईजान को खुश आमदीद कहा जाता है। दीदार अली बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, दर्द दिल आ चुकी हैं वाशिया। वालेकुम अस्सलाम कहती हैं माय फेवरेट आरजे चंदा जानी, आप कैसी हैं, वेलकम टू शो, खुश आमदीद। अली मुर्तजा कहते हैं चापिक पर 2 दिन काम करके 5 दिन सोता ही रहता, ना किसी से बात करो ना किसी के सुनो। सुकून वाली लाइफ हर किसी को चाहिए वाकई।

अपनी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और साथ साथ जनाब आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जल्दी से बताइए इतनी जनाब ये कंजूसियां आखिर किस लिए मैं ये बात समझ नहीं पाती तां पंहिंजे चेहरे सां बि लेखा कयो था आई ली अलाह साईं डो ॾींदव

अच्छा निदा, आपने जो गाने की फरमाइश कर दी ना, ये गाना मैंने कल ही लगाया था 5 बजे वाले प्रोग्राम में। किशोर भाई कहते हैं सॉरी, अज मुझी कंपनी जो वाईफाई हले न थो, बाकी नेटवर्क जी अमा के खबर आ टॉपिक बुधो ही कोना है। हाँ बुधो आ या अन्या कौन बुधो है। अच्छा दर्दी दिल कहती है अपनी जहनी सुकून के लिए 3 चीजें मुख्तसर रखें, अल्फाज, तवक्कात और लोग। बिल्कुल जी सही बात है। अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं कि हस्ती हस्ते दिलों में गम भी है, मुस्कुराती आंखें नम भी है, दुआ करते हैं आपकी खुशी कभी ना रुके, क्योंकि आप आपके हंसी की दीवाने हम भी हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।

बहुत ही प्यारा गाना हमने इंजॉय किया. एक और प्यारा गाना हमारी लिस्ट में है तो वो भी हम साथ साथ सुनेंगे और साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, तो ज्वाइन करते जाएंगे. और उसके अलावा मुझे बताएंगे कि अगर आपको ऐसी एक मतलब ऐसी एक चीज मिल जाए, आपको सिर्फ दो दिन, या तो आप कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, या फिर अपनी जॉब पर जाएं, सिर्फ दो दिन जाएं, ठीक है, बाकी पांच दिन आपने सिर्फ आराम करना है, तो बताएं जिंदगी कैसी गुजरती है.

ओके जी, कश्मीर से खिलाक भाई हमारे साथ के थे सिद्रा, प्लीज प्ले गानों हलायूं था बाबा हलायूं था। और हमारे साथ है मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर, वालेकुम अस्सलाम बाजी, वाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्ती, और सॉन्ग सुनाए हुमेरा सिन्हा का कोई भी अच्छा सा। ठीक है भाई की लगा, भाई को गाना सुनाएंगे जरूर से। और यहाँ पर ईशा हमारे साथ है, ईशा आपको वेलकम कहा जाता है। और उसके अलावा हेंसी मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई कहते मेरी प्यारी बेना सिद्रा मुस्कान। हाँ जी भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है। चाचा खालिद आप पेनर पर मौजूद हैं, आपको भी वेलकम कहा जाता है। रसूलाबाद से आबिद शंबानी भाई कहते हैं दोस्तन खे अस्सलाम वालेकुम, टॉपिक अदी बाकी डी है वही अल्लाह अल्लाह कयूं हां वाह। अच्छा ये सलाम भाव अभी ज्वाइन किया तो फर्स्ट टॉपिक अब कहते हैं अब छुट्टी तो बस ख्वाब ही बन गया है। जब मैं लाड़काना में था तो भाऊ अपनी, हाँ ये तो बात है वैसे, अपनी मर्जी से जाता था, अब अपना काम बस पूछे मत, खबर पहची वही था न माना। चलें जी भाई, एंजॉय करिए अपनी इस जिंदगी को भी, क्योंकि आगे जो है वो क्या पता आगे। मुझे ये लगता है कि हमारे पास जो ये अभी दिन मौजूद है ना, इनको अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि आगे हमारे लिए अच्छे दिन हैं, लेकिन ये हमें लगता है ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जो आपके पास मौजूद है उसमें खुश रहने की कोशिश किया करें। और हमारे साथ ही रियाज महर, वालेकुम अस्सलाम रियाज महर।

मेहमान हैं यहाँ अभी, वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आ रहे हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ओके जी, सो डे स्किन ब्यूटी क्रीम अगर नाइट क्रीम आहे जेके तव्हां राजे टाइम इस्तेमाल कंदा, इस्तेमाल कयो बाबा, सोणा सोणा थियो, खूबसूरती हासिल कयो ऐं सफ़ा घणा प्यारा प्यारा थी वञो। उन खां अलावा मर्द मायूं सभी लगाए सघनि था ऐं नथा मिलनि त तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल बि करायो। ऐं जनाब हाणे तव्हां असां सां गॾु मौजूदु आहियो त तव्हां पंहिंजे हुजण जो सबूत बि ॾियो था ऐं तव्हां शामिली प्रोग्राम थींदा वञो पिया। उन खां अलावा जेके बि माण्हू असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, तव्हांजा बिल्कुलु मैसेजिस आहिनि, फीडबैक आहिनि जेके असां शामिली प्रोग्राम रखूं पिया। पर हिते जेके तव्हांजी पसंदि जा गाना आहिनि त ज़रा गाना बि ॿुधी वठूं था ऐं गाननि जी तरफ़ अचूं था त हीउ वारो हिकिड़ो गानो आहे जेको साहिर बगाची आवाज़ में गानो आहे, सो असां हीउ वारो गानो ॿुधंदासीं।

कॉमेंट्स आहिनि जल्दी जल्दी मथे मथे भॼंदा वञनि था ऐं उन खां अलावा जेके जेके माण्हू असां सां गॾु मौजूदु आहिनि उन्हनि जे कॉमेंट्स खे बि पढ़ंदा हलंदासीं बाबा ऐं ॾिसूं था त केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे जेके माण्हू असां सां मौजूदु आहिनि फेसबुक ते पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो ठीकु आहे अच्छा राशिद बलोच हमारे साथ हैं राशिद बलोच भाई क्या कहते हैं

ओके जी राशिद बलोच लिखते हैं कि आजमाए ॾिसो जिन सां तव्हां चङायूं कयूं हूंदियूं जिन सां तव्हां जूं चङायूं थियल हूंदियूं तव्हां जूं गिलाऊं बि उहे ई कंदा वैसे ॻाल्हि सही आहे राशिद भाउ अच्छा रुखसार मरी भी असो प्रोग्राम बुधे पे रुखसार मरी तवा जो मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पया और ये गुलाम रहीम बलोच हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम कहते अदा प्रोग्राम जबरदस्त आए तवा जो प्रोग्राम बुधो पया थैंक यू सो मच अदा किशोर भाई कहते हैं कि अदा मेरे लैपटॉप में हमेशा गूगल क्रोम न्यू टैब ओपन होता है जिससे मैं आपको चोरी चोरी सुनता हूं ना मैडम को पता भी नहीं चलता और किसी और को तो आज वाईफाई नहीं चल रही है तो बस थोड़ा मसला है चलिए जी कोई बात नहीं वैसे ये आजकल हम ये सोच रहे थे कि नेटवर्क खराब हो गया लेकिन आजकल वाईफाई का भी सेम हाल है बस क्या ही कर सकते हैं अब तुमको मार डालेगी हमारी ये जुदाई मिलने कभी आए तो मिलेंगे ना दोबारा हां जी कभी भी नहीं तौबा कर ली

नौतिया से थानी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम चाचा खालिद, कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम गुड है, बताओ ऑरेंज कलर किसका है? डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो ऑरेंज कलर बिल्कुल नहीं है, ऑरेंज कलर जो है वो व्हाइट एज के फेस वॉश का है, ठीक है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो व्हाइट व्हाइट है, लेकिन फेस वॉश जो है वो थोड़ा सा उसका जो कलर है ना वो मतलब ऐसा कलर है जिसके अंदर ब्लू है और व्हाइट है, हल्का सा ब्लू कलर, लाइट सा ब्लू कलर और व्हाइट कलर, इतना ये प्यारा कॉम्बिनेशन है कि आप परचेज करेंगे तो आप समझ जाएंगे वाह जी वाह हम कितने अच्छे प्रोडक्ट का इंतखाब कर चुके हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप ट्राई करके देखिए। डी स्किन फेस वॉश के बारे में आप लोगों को बताते चलो, तो डी स्किन फेस वॉश जो है ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन का ख्याल रखने वाला प्रोडक्ट है। आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, डीप क्लीन हो जाती है और हाइड्रेट भी रहती है।

किशोर भाईजान आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये हमारे साथी स्मार्टू गोपां कहते हैं, विद रिस्पेक्ट मैं नाराज हूँ आपसे, मेरा सॉन्ग प्ले नहीं किया मंजू सखरानी का, मैं नाराज हूँ आपसे। अरे मंजू सखरानी का कौन सा गाना बताएं आपके लिए लगा देते हैं। अखलाक भाई कहते हैं कि छा गाल कजे वाइट एश क्रीम जी, हाने कुराड़ा कुराड़ियों भी जवान थी वेंदा, बिल्कुल जी सही था जो।

अच्छा गुलाम रहीम बलोच कहते हैं पूरी जिंदगी डाडी भली गुजरे हैं कमाए वेठो खाओ सही गाला वैसे। अच्छा निधि कहती है कि ऐसा लग रहा है इस सॉन्ग पर ये अच्छा साजिद हुसैन सुमरो भैया मैं सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम कहते हैं नाइस योर शो व्हाइट एश वाह वाह बेहतर है जी क्या बात है आप हमें सुन रहे हैं और व्हाइट एश का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद समान कहते हैं दिस टॉपिक इज वेरी सैड देन यू विल ज्वाइन अस फॉर टू डेज सो वी डोंट वांट वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैं सिर्फ आऊं प्रोग्राम करने सिर्फ दो दिन पांच दिन की छुट्टियां मेरे लिए तो मजे लेकिन आपको ये अच्छा नहीं लगेगा।

हाय, मैं तो चाहती हूँ कि बस मैं प्रोग्राम ही ना करूँ, बस मुझे सैलरी जो है ना वो मिलती रहे. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना. तो ये बात है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो ना चाहते हुए भी हमें करनी पड़ती है. बिल्कुल जी, आप ऐसा करें कि आप डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लें. ये जो चॉइस होगी ना आपकी जिंदगी में, ये बहुत कमाल की चॉइस होगी. क्योंकि आपकी खूबसूरती जो है वो अगर डल हो चुकी है, चेहरे पर बहुत ज्यादा मसले आ चुके हैं, आपकी स्किन ऊपर से सेंसिटिव है, तो आपको चाहिए कि आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को बढ़ाएंगे और हमेशा के लिए पाले पाले हो जाएंगे. अली मुर्तजा कहते हैं कि ये इस सॉन्ग वाला सीन चल रहा है आजकल मेरे साथ, समझ कुछ नहीं आ रहा पर मजा आ रहा है. बिल्कुल जी ऐसा ही है.

माना, मां गानो समझण जी कोशिश कयां पई पर सही आ समझी कोने सकेसी। अच्छा ये भाई साथ है, प्लीज प्ले महबूब म्यूजिक चलाइएगा। मेरी फरमाइश और शहबाज जमाली हमारे साथ है, नवाब शाह से आपको वेलकम कहा जाता है। अच्छा ये कहते हैं भाऊ ये सब खुशी का काम है। अच्छा इस पर एक पोएट्री है, लिखते हैं कि या इलाही क्या करूं जालिम जमाना बन गया, जो वक्त था आराम का वो कैद खाना बन गया। भाई ये मतलब सारी चीजें खुशी के ऊपर जाती हैं। खुशी सुन रही होगी हमें। देखो खुशी मैंने कुछ नहीं बोला। ये मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम अदी गोठ नूरपुर खान शहबाज खान खुसू हमारे साथ। अदी गानो बुधराए जो बिल्कुल भात आंचे गाने हलाने की कोशिश कयूं था तवां जो मोहब्बतवान प्रोग्राम बुधो पया। और हमारे साथ ही अस्सलाम वालेकुम अलैहि सलाम अदत डॉक्टर हसीना सूमरो अदी भेण असांगे गानो बुधाए जो फायजा अली जो बोला आहिन तावीज करे तोखे मुखा धार करण जो। हा ठीक ठीक यो गानो हलाईंदा सी। आई थैंक यू सो मच तवां से गुड मौजूद आयो। अच्छा डॉक्टर हसीना सुमरो तुम्हारा बीहर भी सेम मैसेज शेयर

0: FM 88 मीरपुर खास की आवाज।
1: जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है
2: फकीरी नीम पिकली हीट सॉप।
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है
2: फकीरी नीम पिकली हीट सॉप।
1: जुड़ियों छाइयों की महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
2: फकीरी नीम पिकली हीट सॉप। गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम पिकली हीट सॉप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुंघरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम पिकली हीट सॉप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: खूबसूरती जो ईद माइक्रोबीट्स फार्मो

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

लगाते हैं तो चलिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगाएंगे तो आप डी स्किन का फेस वॉश परचेज करके देखिए। डी स्किन फेस वॉश जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एहसास होगा कि भाई फेस वॉश एडो भलो आ तो क्रीम त वठूं जरूरी त पो ता क्रीम वठना इस्तेमाल करना त ता के मजो अची वेनो। सो डी स्किन फेस वॉश लगायो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो न मिलन था त नंबर जेको बुधायो उनन ते राबतो करे वठो।

सोने की चैन। सोन मांगो दिया था छू भला सबने के सोन एडो याद आए। चला आर्टिफिशियल भी तो मिले तो ने। हाँ जी कॉपी आए तो वाइब ओरिजिनल जी इंदी आए हकीकत। और ये कहते हैं सोन में तोरे तो सही अगर महबूब एक मणका मते जो निकतो थे वही गाला ना जो आते इसमें सब कुछ हलो भी नस्बा के नो ही ज्यादा सोन हो जाए पर यो पॉसिबल ना है यो अगे भाषा आकंदा हाने मारो न करे सकंदो ना नको बिल्कुल नहीं।

क्रेजी, ये गाना और ये ड्रामा, क्या बात है, दोनों कमाल। अच्छा ये भाई जनाब कहते हैं, भाई साहब कहते हैं, कौन कमबख्त यहाँ गाने सुनने को आता है, हम तो आते हैं आपको सुन सके, आपकी मोहब्बतें समेट सके, आपके लबों पर स्माइल ला सके। किशोर भाई हमारे, क्या बात है जी, कहने ये वैसे कौन सी मूवी का डायलॉग था, देख नहीं रही ना तो जरा भूल चुकी हूँ।

क्लर्क भाई कहते हैं शुक्र है असां सिद्रा के नेट ते बुदूं था हाँ भाई जी मतलब टेक्नोलॉजी जो दौर आए तो मानो नवा फायदो वटे सही था जो अली नवाज खान हमें सुन रहे हैं भाईजान आपको वेलकम कहा जाता है रिजवान अली भाई हमारे साथ है ये अगर कोई आपको खो देने के बाद खुश है तो यकीन मानो उसको आपकी परवाह कभी नहीं थी हाँ सही था जो अच्छा दीदार अली बिरोही कहते आज कोई गाना प्ले करो हेडा गाना बुधराया थी मावे अंदर नहीं ठहरे होते अच्छा भक्तली सियाल भाई हमारे साथ मौजूद है वेलकम कहा जाता है दर्दे दिल कहती टॉपिक चंदा मैं कुछ भी करती वैसे भी मैं कुछ नहीं करती वैसे भी मैं आवारा हूँ आवारा नहीं इसको निकम्मी बोलते हूँ

लोगों के कमेंट्स ऊपर भी चले गए होंगे, तो समझ जाइएगा जिनके शामिल ना हो सके, ठीक है। और बाकी तो राशिद खुड़ो हमारे साथ है, वेलकम जी वेलकम। और हाले सुल्तान हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम, हेलो कहते हैं आपको हाले सुल्तान, इतना मुश्किल नाम है आपका। अच्छा मुमताज अली भाई हमारे साथ कहते इतनी वफादार नहीं, इतनी वफादारी नहीं कर किसी से, यूं मदहोश होकर इकबाल, ये लोग एक खता पर हजारों वफाएं भूल जाते हैं। आए हाय केड़ी भली गाल कया। आशिक खास के लिए हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम, भली का चौंधा प्यारा भा तमाम के भी प्रोग्राम पसंद अच्छे पे सो मोहब्बत आयन। और वफा शहजादो मक्सी हमारे साथ है, गोठ मोहम्मद सफर मक्सी लाड़कानी खान। ओके जी भाई आपको खुश आमदीद। हिदायतुल्लाह कहते वैसे मैं रात वाला लिसनर हो गया हूँ, अब मैं आपका शोर रात में सुनता हूँ। चलें जी, और क्या काम काज भी जरूरी है ना जिंदगी में, बस मुझे ही तो नहीं सुनते रहेंगे ना, ये चीज मैं समझती हूँ। इसीलिए किसी से कोई शिकायत ही नहीं। अच्छा दीदार अली बिरोही भाई थैंक यू सो मच। और हैप्पी गर्ल कहती है आज मैं भी आ गई लास्ट लिंक में, और चलें जी थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं।

दर्द दिल कहती हम देखना चंदा फुल इस बीन में कमेंट्स पढ़ेंगे. बिल्कुल जी ऐसा ही है. बक्तली सियाल भाई थैंक यू सो मच. और निधड़ी कहती है कोई नबा चुप करे हुए. अच्छा हैप्पी गर्ल थैंक यू आप हमारे साथ. क्या कहती हैं शाम के प्रोग्राम में मिलते हैं. बिल्कुल जी शाम के प्रोग्राम में मिलते हैं. अली मुर्तजा चौथा हवाला भी माना महंगा थी भैया. हाँ हवाला भी अजकल एड़ा न कयो न जेके महसूस थे तो ये हवाला आहिन समझो था. तमाम मतलब डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए सको था. यो तो अफोर्डेबल आहिन सो तमाम वणियो वठी छु. अच्छा मोहम्मद वारिस जूनी जो हमारे साथ है. ओके जी आपको भी वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. अच्छा टॉपिक वारो कमेंट जेको आ ना मां ठो ही ने तवा जो शायद वाकई मते बदी वयो या नेट जी वजह से फांसी पयो के तारन में उलझी वयो. अच्छा शहबाज जमाली भा थैंक यू सो मच आप हमारे साथ. और ये हमारे साथ और कौन है गानों शाह मतलब खत्म थी उन्होंने हाले तो हले तो.

बिल्कुल जी गानो सफा भलो आए ही गाने जी फरमाश हिदायतुल्ला अहमदानी कई हुई असा के बाकी हो जे के गाना रहजन पया ना जे के नहलाए सघ्या आयो कुछ कुछ गाना रहजी वया सो वे मां पंजे बजे वाले प्रोग्राम में हलाईदा आई जे के सैडी थोड़ा गाना हो जाना मतलब थोड़ो ही लाइट हो जे उन जो टोन वे पंजे बजे वाले प्रोग्राम में दसिंदा के जे वे हलाए करे पो मां उन ते पोएट्री पढ़ी सका समझो ता सो पंजे बजे वाले प्रोग्राम में अच जो आई हां छो नहीं दो भला छो ना वो बितान जो प्रोग्राम आए आई तवा की खूबसूरती जो गाली बुधाईना आयो सो तवा खूबसूरत थियो बाबा सबनी जो हकाय खूबसूरत थियो आई पाने खूबसूरती जो ख्याल रखो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल जरूर करजो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले तो तवा पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा गड तवा के वाइट एज जा प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करना है वाइट एज जा प्रोडक्ट जके ना वे भी इलाही सारा प्रोडक्ट आए यानी कि वाइट एज जी लवली क्रीम आए फेयरनेस क्रीम आ एकनी जो ट्यूब आ नाइट क्रीम आए साबुन आए फेस वॉश आए खोर सारा प्रोडक्ट आए जेको भी तवा के सूट करे तवा बस वनो वठी जो इस्तेमाल करण स्टार्ट कयो सो वरी मिलूं था 5 बजे वाले प्रोग्राम में पांजो ओ हिडो जरो ख्याल रखना ओ हिडो जरो किते का गलती थी मुझे तो माजरत कयूं था मोकलानी ना है बाबू सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू ऑल।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मुआसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: यार ही गोडन जो सूर है चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छरी आहे हलण वेहण हर कम दुखियो लगे थो
2: त पोइचा अन्या तई फकीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई थई
1: न यार छा वाकई फायदो करे थी
2: बिल्कुल अदा कुदरती जुजन सा तैयार कैल फकीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंदा ते जल्दी जजब थी सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मा आराम पहुंचाण में मदद करे थी चेल जो सूर हुजे गोडन जो सूर कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
1: इस्तेमाल किए कजे
2: रुगो मुतासिर हंदा ते डीएम में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वच आई बुध जेकरे उमरे या हजते वनन जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सा गड खणी वंजा
1: वाह पोए अजी वठींदस
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडी पांजी वेजे मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
3: सुनते रहो GFM 90.8

लख 40,000 के उसे खां वधी वयो सखर बेराजो मथाओ वेकरो 2,25,360 के उसे थी वयो कोटली बेराजो मथाओ वेकरो 48,047 आए अठियाओ वेकरो 4,892 के उसे रिकार्ड सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच में सिटी बाईपास यूटर्न ठाहिण ऐं सर्विस रोड बाबति दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी NHA चेयरमैन ऐं चीफ सेक्रेटरी जे पेश न थियण ते अदालत पारां कावड़ जो इज़हार अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त NHA चेयरमैन हाईकोर्ट खे कुझु बि नथो समुझे छो न खेसि ॿीहर शोकाज़ नोटिस जारी कयूं सरकारी वकील चयो त AHA चेयरमैन इस्लामाबाद में इजलास हुअण सबबि पेश न आहे थियो मोहलत ॾिनी वञे DC सखर रोड लाइ ज़मीन ॾींदो त कमु शुरू कयो वेंदो हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जी मुबैना लताड़ करप्शन ऐं इम्तिहानी अमल में बेज़ाब्तगियुनि ख़िलाफ़ मुतासिर उमीदवारनि ऐं शागिर्दनि जो 5 ॾींहं एहतजाज जारी एहतजाजी कैंप ते मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी शागिर्दनि वकीलनि ऐं सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि जी आमद जारी आहे मुतासिर उमीदवारनि ऐं शागिर्दनि जी तहरीक जी हिमायत जो ऐलान नवाब शाह मीरपुर माथेले में सिंध तरक्की पसंद पार्टी पारां सिंध में गैर कानूनी तौर तरसियल अफ़गानी शहरियुनि ऐं ॿियनि धारियुनि जे नेकाली लाइ एहतजाज STP कारकुननि मुज़ाहिरो करे धरणा आया अॻवाणनि चयो त सिंध मां गैर कानूनी अफ़गानियुनि समेत समूरनि गैर कानूनी परॾेही शहरियुनि खे नेकाली ॾिनी वञे सिंध हाई कोर्ट में टाउन चेयरमैन ख़िलाफ़ सोशल मीडिया ते मोह मल्हाइण वारे केस जी ॿुधणी अदालत SNP जे वाइस चेयरमैन रमज़ान बुलेदी जी ज़मानत रद्द करे छॾी FIA रमज़ान बुलेदी खे हिरासत में वठी छॾियो रमज़ान बुलेदीअ ते टाउन चेयरमैन लाला रहीम ख़िलाफ़ सोशल मीडिया ते मोह मल्हाइण जो केस दाख़िल थियल आहे लाड़काणे में जूनियर साइंस टीचर लाइ टेस्ट पास कंदड़ उमीदवारनि जो मुतालबनि जी मंता लाइ एहतजाज जारी आहे 40 खां वधीक मार्कूं खणंदड़ उमीदवारनि खे नौकरियूं ॾियण जो मुतालबो कंदकोट में IBA टेस्ट पास उमीदवारनि जो मुतालबनि जी मंता लाइ एहतजाज 5 खां 15 ग्रेड ताईं जूं नौकरियूं ॾियण जो मुतालबो उडेरो लाल स्टेशन वेझो गुज़िरियल ॾींहुं नसीरवा में ॿुॾी वियल नींगर हसीब जो लाश हथ अची वियो आहे पेर त्रिकण सबबि नसीरवा में किरियल नींगर हसीब जो लाश 24 कलाकनि बाद दरगाह साले शाह मोरी वटां मिलियो आहे नींगर जे वारसनि ऐं JUI पारां लाश जी ॻोल्हा में मदद लाइ एहतजाज बि कयो हो

शायरन जे सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो 283 सालनि उर्स जूं तयारियूं मुकमिल। भिट जी नगरीअ खे कुंवार जीअं सिंगारियो वियो। सुभाणे खां शुरू थींदड़ लाखणी लतीफ़ जे उर्स में शिरकत लाइ पांधीड़नि जी आमद जो सिलसिलो जारी आहे। सिक्योरिटी सख़्त। सुभाणे सूबे में आम मोकल बि हूंदी। हिकु वण सिंध अमर जे नाओ मोम जारी। केटीएन न्यूज़ ऐं कावस जे सर ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीली खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मोम जारी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी आहे। सिंध खे सरसब्ज़ रखण वारे अज़म जो बि वर्जाओ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: It's 4:15 PM.
4: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
5: आप सुन रहे हैं DAFM 88 Network, सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

वज़ीर आज़म जी सदारत हेठ काबीना जी तवानाई बाबत कमेटी जो इजलास। कमेटी ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 के मुसवदे में तरमीम की मंजूरी ॾेई छॾी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां ओकरा की कारकर्दगी बेहतर बणाइण ऐं तेल जा स्ट्रेटेजिक ज़खीरा वधाइण जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त नई पॉलिसी ते अमल खे किनी बणायो वञे। आपदा रूस ते रुगो ईरान जो कंट्रोल न हूंदो, ओमान गडियल मैकेनिज़म जोड़ण जी तजवीज़ ॾेई छॾी। परॾेही ख़बरूं इदारे मूजिबि आपदा हरमुज़ बाबति ओमान जी तजवीज़ जा ख़िते जा ॿिया मुल्क बि हामी आहिनि। ओमान जी तजवीज़ आपदा मलाका तर्ज जी आहे, जिते ख़िते जा मुल्क रज़ाकारणी तौर फीस ॾींदा आहिनि, जंहिंसां आपदा मलाका जा ख़र्च पूरा कया वेंदा आहिनि।

हथियार बंदा ना नौजवान अकेले अहमद शाह तो कतल कियो मकतूल नौजवान जे वारिस जो जतो ये अमराणी धुरियन ते नौजवान के कतल करण जो इल्जाम मटियारी मां गुजल दी हुकुम थियल पोरियत तो उर्फ गुंगो जो लाश गंदे पानी में खड मां हथ पुलिस जी जांच जारी पुरियत तो उर्फ गुंगो जो लाश पीर सरहदी महल्ले जे खड मां मिलियो पुलिस पारां मामले जी जांच जारी कोटड़ी वेझो सिंधु दरिया मां भी नामालूम शख्स जो लाश हथ अस्पताल मंतकिल

मुल्क के बतान इलाकन में बरसातन बाद सिंधु दरिया में भी पानी बढ़ने लगो। 24 कलाकन दौरान गुड्डू बैराज से विचोले या सक्कर बैराज से नंढी बोट जो इम्कान। 12 कलाकन दौरान गुड्डू बैराज वट पानी की सतह में 58,000 क्यूसिक बाद गुड्डू जो मथा 1,40,000 क्यूसिक का वधी वियो। सक्कर बैराज जो मथा 1,25,360 क्यूसिक थी वियो। कोटड़ी बैराज जो मथा 48,047 हेठा 4,892 क्यूसिक रिकॉर्ड। सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच में सिटी बाईपास यूटर्न ठाण ए सर्विस रोड बाबत दाखिल दरख्वास्त बुधनी। एनएचए चेयरमैन ए चीफ सेक्रेटरी पेश थियण ते अदालत पारां कवड़ जो इज़हार। अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त एनएचए चेयरमैन हाईकोर्ट खे कुझु बि नथो समझे, छो न खेस ॿीहर शोकास जारी कयूं। सरकारी वकील चयो त एनएचए चेयरमैन इस्लामाबाद में इजलास हुअण सबबि पेश नाहे थियो। मोहलत ॾिनी वञे डीसी सखर रोड लाइ ज़मीन ॾींदड़ त कमु शुरू कयो वेंदो।

हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जी मुबैन लताड़ करप्शन इम्तिहानी अमल में बेज़ाब्तियुनि ख़िलाफ़ मुतासिर उम्मीदवारनि ऐं दहशतगर्दनि जो पंजे ॾींहं बि एहतजाज जारी। एहतजाजी कैंप ते मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी शागिर्द वकील ऐं सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि जी आमद जारी। मुतासिर उम्मीदवारनि ऐं शागिर्दनि जी तहरीक जी हिमायत जो ऐलान। नवाबशाह ऐं मीरपुरबा थिले में सिंध तरक्की पसंद पार्टी पारां सिंध में गैरकानूनी तौर तरसियल अफ़गान शहरीन ऐं ॿियनि दायरनि जी नेकाली लाइ एहतजाज। एस टी पी कारकुननि मुज़ाहिरो करे धरणा हयां। अॻवाननि चयो त सिंध मां गैरकानूनी अफ़गानियुनि समेत समूरनि गैरकानूनी परॾेही शहरीनि खे नेकाली ॾिनी वञे। लाड़काणे में जूनियर साइंस टीचर लाइ टेस्ट पास कंदड़ उमेदवारनि जो मुतालबनि जी मञता लाइ एहतजाज जारी। 40 खां वधीक मार्क्स खणंदड़ उमेदवारनि खे नौकरियूं ॾियण जो मुतालबो। कंदकोट में आईपीए टेस्ट पास उमेदवारनि जो बि मुतालबनि जी मञता लाइ एहतजाज। 5 खां 15 ग्रेड ताईं जूं नौकरियूं ॾियण जो मुतालबो। उडेरोलाल स्टेशन वेझो गुज़िरियल ॾींहुं नसीर वाह में ॿुॾी वियल नीगर हसीब जो लाश हथ। पेर तिरकण सबबि नसीर वाह में किरियल नीगर हसीब जो लाश 24 कलाकनि बाद दरगाह साले शाह मोरे वटां मिलियो। नीगर जे वारिसनि ऐं जे यू आई पारां लाश जी ॻोल्हा में मदद लाइ एहतजाज बि कयो हो।

ॿारनि जे सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे 283 ऐं सियालियाने उर्स जूं तयारियूं मुकमल। भिट जी नगरी खे कुंवार जीअं सिंगारी वियो। सुभाणे खां शुरू थींदड़ लखणी लतीफ़ जे उर्स में शिरकत लाइ पांधीअड़नि जी आमद जो सिलसिलो जारी। सिक्योरिटी सख़्त। सुभाणे सूबे में आम मोकल बि हूंदी।

हिक वण सिंध वणजनाओ मुहिम जारी केटीएन न्यूज ऐं काविश 63 सिंध जी मौसमियाती तब्दीली खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मुहिम जारी मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी सिंध खे सरसब्ज़ रखण वारे अज़म जो बि वर्जा

0: सोलर है बैटरी से डायरेक्ट।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: It's 5:15 PM.
3: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
4: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
5: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
4: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
5: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
4: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
5: गर्दन और कंधों के दर्द
4: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
5: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
5: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
6: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
7: GAFM 88
6: नेटवर्क,
8: सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: शर पसंद देखिए हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हिक वण सिंध मर्च नाम मुहिम जारी। केटीए न्यूज ऐं काविश जे सॾु ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मुहिम जारी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी। सिंध खे सरसब्ज़ रखण वारे अज़म जो बि वरिजाओ।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
3: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: It's 6:15 PM.
5: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
6: Sindh ka har chappa har gosha
7: GAFM 88 network se juda.
6: GAFM 88 network, Sindh ki awaaz.

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्टों के खिंचाव,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ॾाढो सुठो
3: जी FM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। सुबह

चौथिया सीन के हाँ ये 30 पोलिंग स्टेशन पे डाका मारा, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, हमारे लिए

0: नूडली को मफाद कुछ अजी दे रहे हैं, और सबसे बढ़कर इसका नुकसान इस मुल्क का इस अवाम का हो रहा है, और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। क्या मैं ये बर्दाश्त करूं कि मेरे कैंडिडेट के गांव में 30 पोलिंग स्टेशन पे कब्जा किया जाए? क्या हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं? वरना मैं भी सदर सरदारी का बेटा हूँ, मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूँ। मैं सियासत अगर करना चाहता हूँ तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूँ। मुझे मजबूर ना करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचे।
1: डिवीजन में थे चूंडन के रद्द करे छो नून लीग ते थादली जो इल्ज़ाम, पीपल्स पार्टी की कामयाबी जी दावा। मुजफ्फराबाद में कारकुनन के खिताब कहते बिलाल भुट्टो सरदारी कौमी मफाद के पोते करे नून लीग के मफाद के तरजीह दियण वारो सिलसिलो नओ ना है। रियासत के हाँ फैसलो करो पवो तो कौमी मफाद अहम है या नून लीग जो मफाद अहम है। उन्होंने मरहलेवार चूंड धांधलियन लाए करायों। आजाद कश्मीर में पैंजन वोटन के तहफुज कंदासी, मां हनन के न छड़ीस, अवां के अवां जो हक वटी दींदुस, पोते हटण वारो ना आया, नई कें आडो झुकंदुस। कश्मीर जो 100 सैकड़ों सीटू उन्हनि खां खसे वठंदासीं।

बिलावल साहब, इलेक्शन जो फैसलो रियासत न पर अवाम कंदो आहे, तव्हां खे पंहिंजे बयानीअ ऐं कम ते ध्यान ॾियण घुर्जे। लाल भुट्टो विसारे वेठो आहे त 1 साल खां आज़ाद कश्मीर में सदन हुकूमत आहे। पीपल्स पार्टी जे दौर में आज़ाद कश्मीर जूं हालतूं ख़राब थियूं। सियासी बयाननि ऐं रोअण पिटण सां कुझु नाहे थींदो। कामयाबी लाइ कारकरदगी एजेंडा ऐं बयानियूं हुजणु घुर्जे। फज़ल पंजाब, मरियम नवाज़ जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन खे जवाब। मरियम नवाज़ चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान जी चूंडनि में पीपी जी कामयाबी ते वज़ीर आज़म वाधायूं ॾिनियूं। आज़ाद कश्मीर में कामयाबी न मिलण ते बिलावल भुट्टो धांधली जो इल्ज़ाम मड़ी छॾियो। सिंध में लाॻीतो 17 साल हुकूमत कंदड़नि वटि ॿुधाइण लाइ कुझु नाहे। रोड टुटल आहिनि, अवाम ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत घुरे पियो। सिंध जा रोड ऐं गवर्नेंस ठीकु करियो। कारकरदगी हुजे हा त पीपी चेयरमैन खे तनक़ीद जो वक़्तु न मिले हा।

वक्त हालतूं आए वाकया मुसलसल तब्दील ही दा रहन था मुस्तकिल हो जाए थी सिर्फ तब्दीली हर पल तब्दील ही लड़ वाकियन जा नवा पहलू वसी आए गहरो नुक्ता नजर सिर्फ इनसाइड विद नाजिया मीर साहब।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
2: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
2: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
2: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
2: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ढाडो सुठो
1: जी एफ एम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिन जे सीनियर वजीर शर्जी ने नाम में मण वजीर अला पंजाब के इस्तीफा रही बीहर चूंड विहण जो चैलेंज दे छो शर्जी नाम में मण चाहिए तो मरियम नवाज उहदे ता इस्तीफा रही बीहर चूंड खटे डेखारे वो भी सिंध जे के भी तक ता इस्तीफा रही चूंड विढ़ा खबर पेजी वेंदी तो पंजाब जो अवाम तवा सा केतरी नफरत करे तो पंजाब में अवां के खैराती फॉर्म 47 तहत हुकूमत मिली है। आजाद कश्मीर में बदतरीन धांधली करे पीपल्स पार्टी जो मैंडेट चुराए हुए तवां पेंजे पेट पीपल्स पार्टी सा न करो पीपल्स पार्टी की क्यादत अवाम लाए कुर्बानी दिनों तवां जी क्यादत सदाई दुखे वक्त में मुआहिदा करे मुल्क मां भरी वही आजाद कश्मीर चूंडन के पेरे मरले में नवाज सिंह मैदान मारे वरतो पीपल्स पार्टी के शिकस्त मीरपुर डिवीजन के 13 तकन मां 9 ते नून लीग ए 4 ते पीपल्स पार्टी कामयाब वज़ीर आज़म जूं आजाद कश्मीर में कामयाबी ते पार्टी अगवाणन ए कारकुनन के वाधायूं शहबाज शरीफ चयो आहे त आजाद कश्मीर जे वम नवाज शरीफ की क्यादत ते एतमाद कयो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: man. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White H Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White H Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White H Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते सुबह

0: ऐं उन में आहे आलमाणी मेडिकल सेंटर। आलमाणी मेडिकल सेंटर ते डॉक्टर साहिबजन जी क्लिनिक आहे जेका दादू रोड मोरो ते मौजूदु आहे। ऐं उनजी जेका अहम निशानी आहे उहा इहा आहे त बाईपास टाउन मशहूरु हिकिड़ो टाउन आहे मोरो जो, ऐं उनजे बिल्कुलु आम्हूं साम्हूं आहे। अञा बि अगरि सोरहनि लफ़्ज़नि में मां पंहिंजनि दोस्तनि खे सम्झाइणु चाहियां त नेशनल हाईवे खां सिर्फ़ु अधु फरलांग जे मुफ़ासिले ते अंतर शहर वारी तरफ़ डॉक्टर फराज़ कामरान जी क्लिनिक आहे आलमाणी मेडिकल सेंटर ते। उनखां अलावा जेके असांजा मोरो जा लिसनर्स असांखे ॿुधनि पिया त उन्हनि खे ऑलरेडी हमेशह सभु एड्रेस पंहिंजी ॾिसींदा रहंदा आहियूं क्लिनिक जी, पर उन्हनि खे बि मां इहो ॿुधाईंदो हलां त जेका क्लिनिक आहे डॉक्टर साहिबजन जी उहा आहे आलमाणी मेडिकल सेंटर साम्हूं बाईपास टाउन दादू रोड मोरो ते। त सकरनि वारनि दोस्तनि जे लाइ ऐं मोरे वारे दोस्तनि जे लाइ हिन प्रोग्राम में शामिलु थियण जे लाइ बि तरीक़ेकार अथव। तरीक़ेकार उहो आहे त तव्हां लाइव कॉल जे ज़रिए डॉक्टर साहिब खां बीमारियुनि जे मुतालिक़ मालूमात वठी सघो था, ऐं लाइव कॉल जो नंबर नोट कंदा 0318 जेज़मी कन्वर्ट नंबर आहे 0318 40 40 217। हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे मां नंबर ॿुधाईंदो हलां 0318 40 40 217 असांजो लाइव कॉल नंबर आहे। इन नंबर ते तव्हां कॉल करे डॉक्टर साहिब खां बीमारी जे मुतालिक़ मालूमात वठी सघो था। उन खां अलावा इहो ई साॻियो नंबर आहे जंहिं नंबर ते तव्हां कॉल करे डॉक्टर साहिब खां क्लिनिक जी एड्रेस जो मामिलो हुजे या स्पेशली नंबर वठण जो मामिलो हुजे। ख़ासि तौर ते जेके सकरनि वारा दोस्त असांखे ॿुधी रहिया आहिनि ऐं उन्हनि मां को अहिड़ो अलाह न करे को माण्हू ठीकु न आहे ऐं उहो डॉक्टर फराज़ कामरान वटि अचे थो ऐं उनखे क्लिनिक ते अची करे पंहिंजी तबियत ॾेखारणु चाहे थो, त उन जे लाइ इहा आसानी आहे। इहो जेको नंबर मां अनाउंस कयो 0318 40 40 217 इन नंबर ते कॉल करे डॉक्टर साहिब खां पुछा करे ज़रूरु सकरण खां निकिरणु घुरिजे त डॉक्टर साहिबु तव्हां क्लिनिक ते मौजूदु आहियो या न आहियो। अमूमन डॉक्टर साहिब जी जेका टाइमिंग आहे उहा 9 खां वठी शाम जो 5 वॻे ताईं आहे। बग़ैर वक़फ़े जी क्लिनिक खुलियल हूंदी आहे ऐं इन दौरान को बि वक़फ़ो न आहे हूंदो ऐं न ई को मख़्तस ॾींहुं अहिड़ो हूंदो आहे त जुमे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी, सूमर जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी, बिल्कुलु बि न आहे। क्लिनिक हफ़्ते जा समूरा ॾींहं खुलियल हूंदी आहे ऐं क्लिनिक जी एड्रेस आहे आलमाणी मेडिकल सेंटर साम्हूं बाईपास टाउन दादू रोड मोरो, ऐं लाइव कॉल नंबर आहे 0318 40 40 217। त हलूं था डॉक्टर फराज़ कामरान जी तरफ़। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड पखेर रागले।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जज़ाकल्लाह जनाब, जज़ाकल्लाह। क्या हाल चाल है आपके जनाब?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? तबीयत सही है आपकी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं और तमाम सुनने वालों की भी दुआएं हैं कि जो हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं उनके तफ़ैल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक सेहत।
0: अच्छा, कैसा दिन आपका गुजरा आज का ना?
1: जी शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, बड़े अच्छा सा मसरूफ सा दिन गुजरा। कुछ मरीज नए आए, कुछ पुराने मरीज आए जिन्होंने जिनको फायदा हुआ था या जिनको फॉलो अप जिसे कहते हैं ना, दोबारा से चेकअप के लिए आए, किसी की कुछ कमी रह जाती है, इसी तरह मसरूफियत में ये दिन गुजर गया।
0: जी हाँ बिल्कुल, एक डॉक्टर की सबसे बड़ी मसरूफियात तो यही होती है कि उसे पूरा का टाइम क्लिनिक को देना होता है, मगर उसके बावजूद भी आप क्लिनिक को टाइम देते हो, अपने घर को टाइम देते हो, अपने सोसाइटी को टाइम देते हो और उसके बाद हमें भी टाइम देते हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इन सबको जो है ना टाइम देना हमारे लिए बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है और शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने एक अच्छे पेशे से मुंसलिक किया है और इस पेशे के तफ़ैल जो है ना हम दर्द में मुब्तिला लोगों के काम आते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको इसके बदले में अजर देगा क्योंकि आप जो काम कर रहे हो ये अच्छा काम है। तो डॉक्टर साहब कॉलर देखते हैं मोरो का है या सकरन का है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम सलाम।
0: अच्छा, उनजे बावजूद बि तव्हां सां यूरिन जो मसलो आहे।

0: ठीक आहे दादा. डॉक्टर साहब पुछींदा वठूं तव्हां खे 2021 में ऑपरेशन करायो हुयो मसाने जे पुटु
1: जो.
0: ठीक आहे दादा, लेज़र ऑपरेशन बि तव्हां करायो आहे, वॾी महिरबानी. अच्छा डॉक्टर साहब, इहे भाई हमारा इसका ये कहना है की 2021-2022 में दो मरतबा इसने मसाने की पथरी का ऑपरेशन करवाया, उसके बाद 2025 में भी इसने लेजर ऑपरेशन करवाया है. इसके बावजूद अब उसके यूरिन का बड़ा मसला हो रहा है, कोई यूरिन ट्रैक जो है वो डॉक्टर हजरत का ये कहना है कि वो
2: यूरिन
0: तंग हो गया है. अच्छा एक और कॉलर है डॉक्टर साहब, उसके पास चलते हैं फिर दोबारा. अस्सलाम वालेकुम. जी अदा साईं, केयर किथां खां ॻाल्हाए रहिया आहियो?
3: साईं मां गुलज़ार भाण पियो ॻाल्हायां पंजनि किरण खां.
0: जी अदा गुलज़ार, छा था पुछण चाहियो?
3: साईं मूं सां हिकिड़ो मसालो इहो आहे त राति जो मसदा मूंखे निंड सही थी अचे.
0: ठीकु आहे.
3: बाक़ी ॾींहं जो जेको आहे जागां थो त का ॻाल्हि कोन्हे, का माना पखे हेठां पखो हले पियो, जे निंड खॼो पखो पोइ हलंदो पियो आहे मथां. निंड खां पोइ माना मुंहिंजी सॼी जान माना पग थी वञे, सफ़ा पग थी दफ़ा जे चइबो आहे
0: गर्मी बि वधीक आहे न दा. एयर कंडीशन कमरो हूंदो
3: आहे न साईं? पखो मथां हलंदो पियो आहे, पखे में घणी हवा आहे, निंड खां पोइ माना पघर थो वञे.
0: ठीक आहे अदा गुलज़ार, डॉक्टर साहब खां पुछी था वठूं तव्हांजे हिन तकलीफ़ जे मुतालिक. अच्छा डॉक्टर साहब, इस भाई के साथ ये तकलीफ़ है कि इसका ये कहना है कि रात को मैं सोता हूँ तो कोई मसला नहीं है, नींद भी ठीक ठाक आ जाती है, पसीना भी नहीं निकलता, मगर दिन को जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ और मुझे नींद आने लगती है तो मेरे जिस्म पे बहुत ज्यादा पसीना
2: आ जाता है. ठीक है, पहले तो हम अपने पहले मरीज के बारे में बताना चाहूंगा. मसाने की पथरी के बारे में देखिए, ऑपरेशन करने का मकसद जो है ना वो मसाने में या गुर्दे में मौजूद पथरी को सिर्फ निकालना होता है. ऑपरेशन से आप उसको रोक नहीं सकते कि दोबारा पथरी बनने का अमल रुकता नहीं है. और ऑपरेशन जो है उसके साथ आपको पता ही है कि अगर किसी जगह को काटा जाए और फिर वापस उसको जोड़ा जाए, उसके ऊपर टांके वांके लगाए जाए, तो उसकी ओरिजिनलिटी जो है ना वो बरकरार नहीं रहती.
0: ठीक है.
2: जो कुदरती तौर पर जिस्म बना हुआ होता है उसके अंदर बदलाव आ जाता है. और दो बातें होती हैं, बाज़ औक़ात ऑपरेशन से ऐसी पेचीदगी पैदा हो जाती है कि जो दवाइयों से कंट्रोल की जा सकती है, और बाज़ औक़ात ऐसी पेचीदगी होती है कि जिसके लिए हम मरीज़ को ये कहते हैं कि बेहतर तरीका यही है कि आपका जो सर्जन है वो आपको दोबारा से ऑपरेट करे और जो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है उसको रिमूव कर दिया जाए. तो ऐसा मुमकिन भी होता है और ये काम जो है ना ये सर्जन के मुआयने के बाद ही जो है ना पॉसिबल होता है.
0: ठीक.
2: तो मैं इनसे ये कहूँगा कि अगर आप आएँ, आपको हम जो है ना आपकी इस प्रॉब्लम से मुतालिक मेडिसिन देंगे. आपकी जो पथरी बन रही है, ये बार बार पथरी बनने का अमल है, इसको होम्योपैथिक दवाई के ज़रिए रोका जा सकता है. होम्योपैथिक दवाइयों के इस्तेमाल से आपके गुर्दे की सफाई भी मुमकिन है, आपके मसाने में मौजूद पथरी को तोड़ा भी जा सकता है, और जो आपकी पथरी है वो पेशाब के रास्ते बआसानी निकल भी सकती है.
0: ठीक है.
2: रही बात आपके ऑपरेशन के बाद जो आपको प्रॉब्लम हुई है, तो उसके लिए भी हम आपको दवा देंगे, और बहुत सारे केसेस में ये प्रॉब्लम जो है ये ठीक हो जाती है मेडिसिन के ज़रिए ही. अगर मेडिसिन से कवर अप ना हो सके तो फिर हम मरीज़ को ये तजवीज़ करते हैं कि भाई आप इसको ऑपरेट ही करवाओ, क्योंकि पेचीदगी ऑपरेशन की वजह से हुई है.
0: ठीक है.
2: दूसरे साहब जिन्होंने कहा कि भाई मुझे दिन में सोता हूँ तो मुझे पसीना आता है और रात में जब मैं सोता हूँ तो मुझे पसीना नहीं आता, तो उसकी जो साफ साफ वजह है वो सिर्फ एक ही है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें दिन के वक्त टेम्परेचर ज़्यादा है और हमारे जो पंखे होते हैं वो गर्म हवा दे रहे होते हैं.
0: बिल्कुल.
2: हवा तो मिल रही होती है लेकिन वो हवा काफ़ी गर्म होती है, और उसकी निस्बत अगर रात की सिचुएशन देखी जाए तो सूरज ग्रूब होने के बाद आपको इस वक्त मोरों में भी जो आपको हवा मिल रही है तो वो बेहतरीन हवा है. आप उस हवा में जो है ना बआसानी सुकून के जो है ना साथ रह सकते हो, और यही जो एटमॉस्फेयर है ये रात को 10 बजे के बाद जो है काफ़ी बेहतर हो जाता है. और पंखे के सामने जो है ना आपको रिली वगैरह ओढ़ने की जरूरत पेश आ जाती है।
0: बिल्कुल, रात के पिछले पैर में ये
2: ऐसी सूरत हाल होती है ना। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई तकलीफ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मौसम का जो है ना आफ्टर इफेक्ट्स है। ये जो हमारे मौसम गुजर रहा है, जो हमारा इस वक्त एटमॉस्फेयर है, उसमें ये सब चीज़ें, ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल आम सी है, नेचुरल है।
0: हाँ,
2: ऐसा है कि इसमें भी कुछ लोग जो है ना शिकायत करते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे ज़्यादा पसीना आ रहा है और फलाने को कम आता है। तो जिस्म जो है ना, हर जिस्म अलग खासियत रखता है। कुछ लोगों को ज़्यादा पसीना आता है और कुछ लोगों को कम आता है। जिनको ज़्यादा पसीना आता है तो वो भी जो है ना सेहतमंद लोग हैं, और जिनको कम पसीना आता है, मैं उनको ये कहूँगा कि शायद कम पसीना आना जो है ना वो ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन उन लोगों को फिर पेशाब ज़्यादा आता है, तो इस वजह से जो है ना अगर आपको पसीना आ रहा है तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है।
0: जी अदा गुलजार, तव्हां बिल्कुलु परेशान न थियो। ऐं पघर जेको तव्हांखे अचे थो, इहो गरम हवा जे करे अची रहियो आहे, छो जो ॾींहं जो असां वटि टेम्परेचर 40-50 जे विच वारो हूंदो आहे। फील लाइक जंहिंखे असां चवंदा आहियूं, उहो फील लाइक त 50+ हूंदो आहे, जंहिंजे करे असांखे पघर घणो निकिरंदो आहे। इन लाइ तव्हां परेशान न थियो। ऐं ज़ाहिरी सी ॻाल्हि आहे त भली केतिरी बि तेज़ हवा पखो तव्हांखे ॾेई रहियो आहे, पर ॾेई त गरम रहियो आहे। ऐं जिस्म खे गरम हवा लॻंदी त उनजो नतीजो इहो निकिरंदो त पघर निकिरंदो। बाक़ी अदा सलीम रज़ा भट्टी साहिब, डॉक्टर साहिब जिन जो इहो चवणु आहे त तव्हां अचो। ऐं क्लिनिक आहे आलमाणी मेडिकल सेंटर साम्हूं, बाईपास टाउन, दादू रोड, मोरो। डॉक्टर साहिब जिन जी क्लिनिक मोरो में आहे, तव्हां हलिया अचो। डॉक्टर साहिब उते सुबुह जो 9 वॻे खां वठी शाम जो 5 वॻे ताईं पंहिंजी क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा आहिनि। ऐं डॉक्टर साहिब जन जो इहो चवणु आहे त इनशाला ताला जेका इहे ऑपरेशन जे बाद जेके पेचीदगियूं थींदियूं आहिनि अक्सर करे, उन्हनि सभिनी जे लाइ होम्योपैथिक जी दवा ज़रिए बहितर खां बहितर इलाज मौजूदु आहे। त प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि डॉक्टर फराज़ कामरान सां गॾु तव्हां जीअं मोरो FM एटीअ जे लाइव स्टूडियो मां ॿुधी रहिया आहियो। ऐं हिन वक़्तु असांखे न सिर्फ़ु मोरो वारा असांजा दोस्त, बल्कि सकरनि वारा बि जेके असांजा लिसनर्स आहिनि जीअं FM नेटवर्क जा, उहे बि हिन वक़्तु असां सां गॾु आहिनि। उहे बि असांजो ई प्रोग्राम ऐं असांजो शो जेको सिहत जे मुतालिक शो आहे इहो ॿुधी रहिया आहिनि। त तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त जीअं मोरो FM 88 जे लाइव स्टूडियो में हलंदड़ हीउ प्रोग्राम होम्योपैथिक दवा जी अफ़ादियत, होम्योपैथिक दवा जो इस्तेमाल ऐं होम्योपैथिक दवा जा फ़ाइदा, उन बाबति तव्हांखे आगाही ॾियण जे लाइ ऐं तव्हांखे तव्हांजे सिहत जे मुतालिक तमामु सुठी आगाही जेका ॾियण जे लाइ हीउ प्रोग्राम असां शुरू कयो हुयो, ऐं जेको इनशाला ताला हली रहियो आहे। डॉक्टर फराज़ कामरान जेको इलाही तजुर्बो रखंदड़ होम्योपैथिक दवा जो डॉक्टर आहे, जेको जंहिंजो तालुक़ु इस्लामाबाद खां आहे, ऐं पाण इस्लामाबाद खां मोरो में आहिनि ऐं मोरो में क्लिनिक कंदा आहिनि। ऐं डॉक्टर साहिब जन जी क्लिनिक मोरो शहर में ई आहे, ऐं सुबुह जो 9 खां शाम जो 5 वॻे ताईं पंहिंजे क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा आहिनि। तव्हां असांजे हिन प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था। नंबर आहे 0-3-18-40-40-217। नंबर हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां, 0-3-18-40-40-217 इहो नंबर आहे। हिन नंबर ते तव्हां कॉल करे डॉक्टर साहिब खां जेकी बीमारियुनि जे मुतालिक़ मालूमात वठी सघो था। अक्सर करे ॾिठो वियो आहे त हिन वक़्तु जेको मौसम आहे उहो तमामु तेज़ गरम आहे, गर्मियूं तमामु घणियूं हली रहियूं आहिनि। राति जो मौसम थधो ऐं ॾींहं जो मौसम इलाही गरम आहे, उनजे करे ख़ासि तौर ते तमामु घणा सिहत ते असर पइजी रहिया आहिनि।

सीन के ये 30 पोलिंग स्टेशन पे डाका मारा जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है। इंशाल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है हमारे लिए कौमी मुफाद।

नेतन्याहु चाहे थो त आउं सदाई जंग में फाथल हुजां। ईरान जे एटमी सरगर्मियुनि बाबति मूंखे इसराइली वज़ीर आज़म जी ॼाण जी ज़रूरत नाहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो फॉक्स न्यूज़ खे इंटरव्यू। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जे मामले ते मौक़िफ़नि ताईं सख़्त आहे। मुआदो न थियो त ईरान में मिशन मुकमल कयो वेंदो। ईरान खे हाणे मुआदनि जी भॼकड़ी करण न ॾिनी वेंदी। सामूंडी लंग हुर्मुस ते अमरीका जो मुकमल कंट्रोल आहे। ईरान जे पावर प्लांट्स ऐं पुलनि ते हमलनि जो को इरादो नाहे।

मुक़ाबला रुस्ते रुगो ईरान जो कंट्रोल न हूंदो ओमान गडियल मैकेनिज़म जोड़ण जी तजवीज़ ॾेई छॾी वॾी ख़बरूं इदारे मूजिबि आपदा हरमुस बाबति ओमान जी तजवीज़ जा ख़िते जा ॿिया मुल्क बि हामी आहिनि ओमान जी तजवीज़ आपदा मुलाक़ात तर्ज़ जी आहे जिते ख़िते जा मुल्क रज़ाकारी तौरु फीस ॾींदा आहिनि जंहिं सां आपदा मुलाक़ात जा ख़र्च पूरा कया वेंदा आहिनि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राक्षी जो बि ओमानी ऐं सऊदी हमनसब सां फ़ोन ते राब्तो आपदा हरमुस समेत ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं ईरान सालिसन ज़रिए अमरीका जूं पहुचायल तजवीज़ूं रद्द करे छॾियूं आहिनि ईरानी परॾेही वज़ीर कासिम करीमाबादी चयो आहे त अमरीका सां सालिसन ज़रिए ॻाल्हियूं इस्लामाबाद में थियूं हुयूं जेके अमरीका जे ग़ैर ज़रूरी मुतालबनि सबबि नाकाम थियूं जंहिं बाद अमरीकी वफ़द इस्लामाबाद खां वापसि हलियो पियो जंहिं बाद ईरान बि ॻाल्हियूं जारी रखण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर न कई ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमरीका तेहरान जी ॿीहर नाकाबंदी कई त फ़ैसिले खे जंग में वाधि सम्झो वेंदो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां अमरीकी कांग्रेस ऐं वापारी वफ़दनि जी मुलाक़ात इस्लामाबाद में मुलाक़ात दौरान ॿितरफ़नि लाॻापनि इलाक़ाई तोड़ी आलमी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि शहबाज़ शरीफ़ अमरीकी सदर लाइ नेक ख़्वाहिशुनि जो इज़हार

मिट्टी में खुराक खाते के गोदामन कणक की 10,000 बोरियन की खुर्द घुर्द जो नव स्कैंडल सामू अची वो एंटी करप्शन टीम जा खुराक खाते के जिले ऑफिस मिट्टी के फूड गोदाम से छापा कामूरा रिकॉर्ड समेत ऑफिस गोदाम के ताला हणी खिसकी वह एंटी करप्शन अमलदारों को चवण है जांच ए रिकॉर्ड हथ कर छापा हया आन एक महीनों अग करोड़े रुपये की कणक मुबैना जाली बैंक चालान जरिए हड़प कर स्कैंडल सामू आयो हो जैसी जांच हलंदड़ है मेहड़ में भी एंटी करप्शन अमलदारन की कार्रवाई कणक जो 23,000 बोरियो खुर्द बुर्द करे केस में रूपोश जवाबदार सलीम दल गिरफ्तार केस जो बो जवाबदार हसन दल जमानत से आजाद है। उडेरो लाल स्टेशन वेझो गुजर

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ क्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सीन के हाँ ये 30 पोलिंग स्टेशन पे डाका मारा जो इन्होंने कुटली के वोट पे डाका मारा है इंशाल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है हमारे लिए कौमी मुफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मुफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मुफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मुफाद को तरजीह दे रहे हैं। सबसे बढ़कर इसका नुकसान इस मुल्क का अवाम का हो रहा है और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। क्या मैं ये बर्दाश्त करूं कि मेरे कैंडिडेट के गांव में 30 पोलिंग स्टेशन पे कब्जा किया जाए? क्या हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं? वरना मैं भी सदर सरदारी का बेटा हूँ, मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूँ। मैं सियासत अगर करना चाहता हूँ तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूँ। मुझे मजबूर ना करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचे।
1: आजाद कश्मीर के चूंड नतीजन पीपल्स पार्टी नवाज लीग एक भेरों बीहर आमू सामू आने छो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग मथा आजाद कश्मीर में बदतरीन धांधलन जा इल्जाम। नतीजा कबूलन का बेनकार बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद में कारपोरेट के खिताब कदे कौमी मफाद के पोते कर नून लीग के मफाद के तरजीह दियण वो सिलसिलो नव ना है। रियासत के हाँ फैसलो करो पव कौमी मफाद अहम है या नून लीग जो मफाद अहम है। मरहले चूंड धांधलियन लाई करायू व्यू आजाद कश्मीर में पैंजन वोटन जो तहफुज कंदस अवां के अवां जो हक वठी डींदुस पोते हटण वारो ना आया नई के आडो झुकंदस पुरअमन रहण चाहियां थो न त आऊं भी सदर जरदारी जो पुट मीर शाह नवाज ए मीर मिर्ज़ा भुट्टो जो भाणे जाहियां। शहीद बेनज़ीर जी सियासत करण चाहियां थो मुखे वधिक मजबूर न कयो वञे।

0: अल्हम्दुलिल्लाह कल हमें 13 में से 9 नशिस्तें मिल गई हैं। पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ने अभी एक स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला आवाम करते। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहां धांधली नहीं। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहां पर आपने धांधली का इल्जाम लगाया। सूबा सिंध एक वाहिद सूबा है जहां तकरीबन 17 साल से मुसलसल एक जमात की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और ये सियासी बयानबाजी पे टाइम गुजारने से रोने धोने से 17 साल की मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। और पीपल्स पार्टी ही के दौर में वहां के हालात खराब हुए। आप अपने सूबे की कारकर्दगी पर, अपनी कारकर्दगी पर गौर करें, आप अपनी खुद एहतसाबी करें। मैंने ये कहा था कि जिनके लोगों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे, तो आप इस चीज पर जरूर अपनी खुद एहतसाबी करें। आपकी कोई कारकर्दगी नहीं, आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं, आपकी कोई गवर्नेंस नहीं, आपका कोई मंशूर नहीं, सवाए जातियात पे बात करने के या लोगों को ताने देने के लिए।
1: बिलावल साहब, इलेक्शन जो फैसलो रियासत न पर आवाम कंदो आहे, तव्हां खे पंहिंजे बयानीअ ऐं कम ते ध्यानु ॾियणु घुर्जे। बिलावल भुट्टो विसारे वेठो आहे त 1 साल खां आज़ाद कश्मीर में सदन हुकूमत आहे। पीपल्स पार्टी जे ई दौर में आज़ाद कश्मीर जूं हालतूं ख़राब थियूं। सियासी बयाननि ऐं रोअण पिटण सां कुझु नाहे थींदो। कामयाबी लाइ कारकर्दगी एजेंडा ऐं बयानियो हुजणु घुर्जे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन खे जवाब। मरियम नवाज़ चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान जे चूंडनि में पीपी जी कामयाबी ते वज़ीर आज़म वाधायूं ॾिनियूं। आज़ाद कश्मीर में कामयाबी न मिलण ते बिलावल भुट्टो धांधली जो इल्ज़ाम मणी छॾियो। सिंध में लाॻीतो 17 साल हुकूमत कंदड़नि वटि ॿुधाइण लाइ न आहे। रोड टुटल आहिनि, आवाम ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत घुरे पियो। सिंध जा रोड ऐं गवर्नर्स ठीक करियो। कारकर्दगी हुजे हा त पीपी चेयरमैन खे तनक़ीद जो वक़्तु न मिले हा।
2: पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का टीवी पे एक रिकॉर्डेड खिताब सुना, वो एक मिसाल है कि जी एक चोरी प्रोसेस ही ना चोरी, और जिस तरीके से वहां पे मैंडेट चोरी हुआ, खुले हम असली की नुमाइश की गई और पीपल्स पार्टी के वर्कर को शहीद किया गया, जिस तरीके से शरारती इकतदार पे पीएम एलन की हुकूमत बैठी हुई है फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि आज भी जो इलेक्शन हुए जो फैसला होता है वो आवाम करती है। अगर आपने कोई तरक्याती काम किया तो उसका फैसला आवाम ने करना है। सिंध में अगर तरक्याती काम किया है तो उसका फैसला आवाम ने करना है। क्या वजह है कि आपको 2024 में बदतरीन और तारीखी शिकस्त नसीब हुई, और सिंध में पीपल्स पार्टी को हर साल हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा सीटें मिलती है। सेहत की सहूलियात सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है तो वो सूबा सिंध में है। सूबे की सड़कें हैं वो बेहतर है, और जितनी भी वफाकी हुकूमत की सड़कें हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और ज्यादातर पी एम एल एन फेडरल गवर्नमेंट में रही है, और उन्होंने हमेशा जो है वो सिंध को इग्नोर किया। और मैं बहुत खुला चैलेंज करता हूं, आप कोई भी पंजाब का हल्का आप चुन लें, आप इस्तीफा दे दें मोहतरमा साहिबा चीफ मिनिस्टर साहिबा, और दोबारा किसी भी इलेक्शन से पंजाब में किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा दें। हम भी आप इस्तीफा देते हैं, हम भी किसी भी सीट से इलेक्शन लड़ते हैं सिंध से, तो देखेंगे सिंध की आवाम हमें इलेक्शन में वोट के देकर कामयाब करेंगे, और पंजाब की आवाम आपको किसी भी हल्के से कामयाब नहीं करेंगे। देखेंगे पंजाब की आवाम आपसे किस हद तक नफरत करते हैं। जबरदस्ती इकतदार की कुर्सियों पे आप बैठे हुए हैं और ऊपर से अपने आपको जाहिर करते हैं। मैं ये कहूंगा कि आप लोग वो किराएदार हैं जो किराए पे आए और इकतदार में बैठे और अपने आपको मालिक मकान समझ के बैठे हैं।
1: सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील ना मेमण वज़ीर आला पंजाब खे इस्तीफ़ा ॾेई ॿीहर चूंड वञण जो चैलेंज ॾेई छॾियो। शर्जील ना मेमण चयो आहे त मरियम नवाज़ उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई ॿीहर चूंड कटे ॾेखारे, हू बि सिंध जे कंहिं बि तक तां इस्तीफ़ा ॾेई चूंड विढ़ंदा। ख़बर पइजी वेंदी त पंजाब जो अवाम तव्हां सां केतिरी नफ़रत करे थो। पंजाब में अवाम खे ख़ैराती ऐं फॉर्म 47 तहत हुकूमत मिली आहे। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली करे पीपल्स पार्टी जो मैंडेट चुरायो वियो। तव्हां पंहिंजी भेट पीपल्स पार्टी सां न करियो। पीपल्स पार्टी जी क़यादत अवाम लाइ क़ुर्बानियूं ॾिनियूं। तव्हांजी क़यादत सदाई ॾुखे वक़्त में मुआदा करे मुल्क मां भॼी वई।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।